0: और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में चिंतन वंदनवार कार्यक्रम।

आइए सुने आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए श्रोताओ आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 183। संगीत सरिता कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 6:45 से और इसका पुनः प्रसारण संध्या 6:45 से। आज आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें।

आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए और 8:15 से कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 8:30 से। पार्श्व गायक तलत महमूद पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 से। दस बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी, कहानी है सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका और स्वर ममता सिंह। 11 बजे से चित्रपट संगीत और 11:30 से कार्यक्रम मैटनी शो। 12 बजे आप सुनेंगे समाचार और 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 2 बजे के सुरीला सफर कार्यक्रम का आनंद उठाइए दिन में 1 बजे से और 2 बजे से कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:15 से समाचार होंगे और 2:30 से आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे से आप सुनेंगे अपना मनचाहा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे नाटक पोस्टमैन का पहला भाग। के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद है ये और हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। 4 बजे आज पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज जिसमें आप सुनेंगे गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 5 बजे से छाया गीत और 5:30 से तराने नए पुराने। 6 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे समाचारों के बाद 6:05 से और 6:35 से संध्या रंजन। संध्या 7 बजे से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला और 7:45 से आज इंद्रधनुष में जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आज सुनो कहानी। सुनो कहानी में आज हम आपको सुनवाएंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आज आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, स्वर है ममता सिंह का। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित किया जाएगा और 8:45 से समाचार। रात्रि 9 बजे से कार्यक्रम होगा आपके लिए और 9:30 से आज के फनकार जो केंद्रित होगा पार्श्व गायक तलत महमूद पर। रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम ढलती जाए रात। तो ये थी जानकारी विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की और अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 183।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 183। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की आज अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और आमंत्रित कलाकारों का हम स्वागत कर रहे हैं। कल्पना जी, हमें बताइए कि क्या शास्त्रीय संगीत में महिलाओं की रचना शैली पुरुषों से भिन्न रही है?
2: जी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पहले ज़माने में जो रचनाएं बनाई गई वो अधिकतर पुरुषों द्वारा ही बनाई गई है, रचित की गई है
1: जी।
2: तो उसमें उनके मन के भाव परिलक्षित होते हैं, या जो वर्णन किया जाता है वो महिला के लिए उद्देश्य से किया जाता है
1: जी, जी।
2: कई रचनाओं में नृत्य के लिए उपयोगी बंदिशें बनाई गई है, किसमें भक्ति भाव है
1: जी।
2: तो वो एक अलग एस्पेक्ट था। और अब जो महिलाएं बंदिशें बनाती है उनके मन के भाव अधिकतर हमको उसमें दिखाई देते हैं
1: जी।
2: और उसके साथ में श्रृंगार और मधुर शब्दावली और अलग अलग मन की भावनाओं को प्रकट करना, व्यक्त करना, ये अधिकतर हमें दिखाई देता है आजकल की जो महिला रचनाकार बंदिशकार हैं उनके।
1: तो आज किन बंदिशकार की चर्चा आप करेंगे?
2: आज हम डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे जी के बारे में हम जानकारी बताएंगे और उनके द्वारा बनाई हुई बंदिशों को भी प्रस्तुत करेंगे। अश्विनी जी ने संगीत की तालीम जयपुर अतरौली घराने की गायिका और उनकी माँ श्रीमती माणिक भिड़े जी से तालीम हासिल की, जो गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी की शिष्या थी। उसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर पई जी से भी संगीत का मार्गदर्शन प्राप्त किया और शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का उन्होंने रचनाओं का संकलन राग रचनांजलि के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किया है
1: जी।
2: और अनेक शिष्यों को आजकल वो तैयार कर रही हैं घराने की परंपरा के अनुसार, और अलग अलग शैलियों की शिक्षा भी वो प्रदान कर रही हैं
1: जी। तो जी, आज की इस कड़ी में किस राग की चर्चा की जाए?
2: आज अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिशों में से राग सोहनी में एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बेग मोरी सुधारो करतार
1: जी।
2: तो राग सोहनी का थोड़ा सा चलन मैं बताती हूँ और अनुजा आपके सामने वो बंदिश प्रस्तुत करेगी
1: जी। स्वागत है।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया। ये जो तान ली आपने इस बंदिश में, बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत अंदाज हम सबको बहुत पसंद आया, और राग सोहनी पर आधारित ये रचना थी, अपने श्रोताओं को बता दें। अब कल्पना जी बताइए कि हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगी आप?
1: अब अश्विनी जी ने गाई हुई, अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिश आपको राग नंद में हम आपको सुनवाते हैं, मोहे करण देरे, ताल तीन ताल में
0: जी।

0: संगीत सरिता की आज की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे की। अब इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम कुछ और जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम, जिन्हें हम हमारे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त का नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। आगाज करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का सुविचार के साथ। ऊंचाई तक पहुंचिए, क्योंकि सितारे आपके भीतर छुपे हुए हैं। गहरे सपने देखिए, क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले आता है। रविंद्रनाथ टैगोर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त का नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। आगाज करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का सुविचार के साथ। ऊंचाई तक पहुंचिए, क्योंकि सितारे आपके भीतर छुपे हुए हैं। गहरे सपने देखिए, क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले आता है। रविंद्रनाथ टैगोर।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब चर्चा करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती उनके जन्मदिन यानी 9 मई को मनाई जाती है। आज का यह दिन उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करने का एक अवसर है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता और तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, लेकिन बंगाली कैलेंडर के अनुसार यह दिन वैशाख महीने के 25वें दिन आता है, जिसे 25वीं वैशाख कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में यह दिन विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और उपलब्धियों की, तो टैगोर एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि थे, साथ ही साथ लेखक, नाटककार, चित्रकार और संगीतकार भी थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल थी गीतांजलि, काबुलीवाला, पोस्ट मास्टर जैसी प्रसिद्ध कहानियां, रविंद्र संगीत और कहीं नृत्य आधारित कार्यक्रम। श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी टैगोर साहब के द्वारा ही लिखा गया था। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व थे, जहां शिक्षा को प्रकृति और सांस्कृतिक सीख के साथ जोड़ा गया। इसके अलावा टैगोर राजनीतिक जागरूकता में भी सक्रिय रहे। खासकर बात करें ब्रिटिश शासन के दौरान उनके जीवन में शिक्षा, कला, साहित्य और मानवतावाद का समावेश दिखाई देता है। टैगोर जयंती पर स्कूल और कॉलेजों में उनके नाटक, कविताओं और गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। विशेष रूप से ठाकुरवाड़ी और शांति निकेतन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज का यह दिन उनके साहित्य और संगीत को प्रस्तुत किया जाता है। विदेशी छात्र भी इन सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे टैगोर की वैश्विक छवि को सम्मान मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले एशियाई साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं केवल और केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य और कला की संदर्भ प्रणाली में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज की इस जयंती का उद्देश्य उनके योगदान से प्रेरणा लेना और नई आने वाली पीढ़ी को साहित्य, संगीत और मानवतावादी दृष्टिकोण की सीख देना हम सभी की परम आवश्यकता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए बात करते हैं महाराणा प्रताप जयंती के बारे में। हर साल 9 मई को यह जयंती मनाई जाती है। महान वीर और मेवाड़ के राणा के साहस, शौर्य और स्वतंत्रता के प्रति उनके अदम्य संकल्प का स्मरण कराती है। महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी के महान योद्धा थे। इनका जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इन्होंने मेवाड़ और उसके लोगों की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं, विशेष रूप से मुगलों के साथ संघर्ष किया। 1579 के बाद इन्होंने पश्चिमी मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया और डूंगरपुर के पास अपनी नई राजधानी स्थापित करी। महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल और उनकी अडिग इच्छा ने भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में उन्हें अमर बना दिया। महाराणा प्रताप जयंती का यह पर्व उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की याद दिलाने में मनाया जाता है। आज के दिन विशेष रूप से राजस्थान में व्यापक रूप से यह पर्व मनाया जाता है और इस अवसर पर लोग उनके व्यक्तित्व, वीरता और न्यायप्रियता को याद करते हैं। विभिन्न स्कूलों, विद्यालयों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को उनके जीवन की प्रेरक गाथाएं सुनाई जाती हैं।

जयंती के अवसर पर राजस्थान सहित पूरे देश में उनके स्मारकों और प्रतिमाओं पर पुष्प अर्जित किए जाते हैं और साथ ही उनके सम्मान में पूरा दिन विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कहीं सरकारी और सामाजिक संगठनों के द्वारा रैली, भाषण और प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं ताकि हमारी आने वाली नई पीढ़ी को उनके साहस और स्वाभिमान की प्रेरणा मिल सके।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं नमस्कार, झालावाड़ कार्यक्रम में आइए जानते हैं हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण किया जाएगा। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युवा श्रोता पूर्वी ठाकुर से दीपेश यादव की बातचीत। सवेरे 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के चंद्रभागा चैनल से कार्यक्रम महिला जगत।

सुबह 5:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पत्रों पर आधारित आपकी फरमाइश। शाम 6:05 पर एक बार फिर आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे और शाम 7 बजे आप सुनेंगी किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और रात्रि 9 बजे कार्यक्रम सबरस का प्रसारण किया जाएगा।

0: श्रोतों, ये था आज के हमारी कार्यक्रम की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।
1: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए बात करते हैं

गोपाल कृष्ण गोखले जयंती के बारे में। हर साल आज के दिन यानी 9 मई को यह जयंती मनाई जाती है, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोखले के जन्मदिन के अवसर पर होती है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी जिले के कोटलुक गांव में हुआ था। आप एक समाजसेवी, राजनीतिक नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले ने अपने जीवन में शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता संग्राम को महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें अगर प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, तो युवाओं को राष्ट्रीय सेवा और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु इन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। साथ ही वर्ष 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और नरमपंथी दल के प्रमुख प्रवक्ता रहे। 1899 से 1902 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य और 1902 से लेकर 1915 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में कार्यरत रहे। इन्होंने ही माल्य मिंटो सुधार 1909 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की और साथ ही महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए ये पक्षधर रहे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए महात्मा गांधी से ये मिले और उनके लिए प्रेरणा बने। तो श्रोताओं, गोखले उदार और लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की प्रगति के लिए परमावश्यक है और उन्होंने चरित्र निर्माण, सामाजिक सेवा और नैतिक नीति पर जोर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती 9 मई को मनाई जाती है, जिसमें उनके योगदान को याद किया जाता है और आज के दिन विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करने, युवाओं को सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रेरित करने और शिक्षण और सुधार के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए यह जयंती मनाई जाती है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के हमारे नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम में अगली चर्चा का विषय पर, ग्रीष्म ऋतु में लू से बचाव। लू यानी हीट स्ट्रोक तब होता है जब अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर का तापमान नियंत्रण खो देता है। इसके कारण शरीर में पानी और खनिज लवणों की कमी हो जाती है, जिससे सिर में दर्द, चक्कर, उल्टी, तेज पसीना या इसके विपरीत पसीना न आना आदि लक्षण पैदा होते हैं। बात करें लू से बचाव के लिए, तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी अपने घर, वातावरण, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, साथ ही साथ जल और भोजन की व्यवस्था, अपने कार्यस्थल और बाहरी गतिविधियों के लिए विशेष सावधानी बरतें। घर को ठंडा रखने के लिए आप पर्दे, पंखे या एयर कूलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से आप बच सकते हैं, विशेषकर दोपहर के समय जब धूप बहुत तेज होती है। धूप में निकलने से पहले आप अपने सिर और कान कपड़े से ढक लें, हल्के मुलायम सूती और ढीले कपड़े पहनें ताकि आसानी से पसीने सोख लिया जाए और हवा का प्रवाह अंदर तक बना रहे। आप इसके लिए सनग्लासेज और सनस्क्रीन का उपयोग कर त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, चाहे प्यास न लगे। ORS या घर पर तैयार जीवन रक्षक घोल, जिसमें आप एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर और एक चुटकी नमक या थोड़ा सा नींबू भी पी सकते हैं। ठंडे पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कीजिए, और साथ ही उच्च प्रोटीन वाले आहार अगर आप लेते हैं तो एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। साथ ही साथ कार्यस्थल और भारी गतिविधियों की अगर हम बात करें, तो हमारे जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए साथी हैं, वो अपने साथ कार्य कर रहे अपने सहयोगियों के लिए, अपने मजदूरों के लिए ठंडा पानी, शेड, समय सारणी में आप बदलाव कर सकते हैं, और साथ ही साथ अतिरिक्त विश्राम अवधि भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। पुलिसकर्मी

और बाहरी कार्यकर्ताओं को अपनी ड्यूटी के दौरान ठंडे जैकेट पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही घर में रह रहे हमारे वरिष्ठ नागरिकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों से उन्हें बचना चाहिए और लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। बात करें लू के लक्षण और प्राथमिक उपचार की, तो लू के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जैसे सिर में भारीपन, तेज बुखार, चक्कर, उल्टी, प्यास, कम पेशाब, कमजोरी, पेशाब न आना, पसीना आदि ये कार्यक्रम हो सकते हैं। लक्षण दिखने पर छाया में आप लेटिए, ठंडे पानी से पट्टी को आप अपने शरीर पर रखिए, सिर पर रखिए और पंखे और हवा के नीचे आप आराम कीजिए। साथ ही साथ कच्चे आम का पाना या जलजीरा भी आप पी सकते हैं और जल्दी से आपके पास के स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों में उपचार हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए वाटर एटीएम और ओआरएस एटीएम की सुविधा और पेयजल की व्यवस्था भी आप ले सकते हैं। मनरेगा क्षेत्रों और सार्वजनिक कार्यस्थलों पर छाया स्थल और समय सारणी में बदलाव करके साथ ही साथ प्रत्येक जिले स्तर पर कार्यरत प्याऊ केंद्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में पानी और बिजली की उचित व्यवस्था करके भी, इन सावधानियों और उपायों का पालन करके भी कोई भी व्यक्ति इस ग्रीष्मकाल में लू के गंभीर प्रभावों से बच सकता है।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नए महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं, 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: श्रोताओं नमस्कार, झालावाड़ कार्यक्रम में अब बात करते हैं स्थानीय सूचनाओं के बारे में। तो राज्य सरकार ने राज्य के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान किया है। जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार के लिए 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे हथकरघा बुनकर जो जिले की सीमा में बुनाई कार्य कर रहे हों और पिछले 3 वर्षों से इस कार्य में संलग्न हो, वे सभी इसके पात्र होंगे। साथ ही जिन बुनकरों का गत 3 वर्षों में पुरस्कार के लिए चयन नहीं हुआ है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। अपने आवेदन पत्र जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र झालावाड़ में आप जमा कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा आज 9 और 10 मई को होने जा रही है। जिले में कुल 20 केंद्रों पर परीक्षा होंगी। परीक्षा सुबह 9-11 बजे से लेकर 2 बजे तक होंगी। और चलते चलते बात करें आज के तापमान के बारे में, तो अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और इसी के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ अब यहीं संपन्न होता है। तो दीजिए आपके रेडियो दोस्त को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत।

हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: शुद्धम ये गीत है फिल्म आनंद आश्रम का। किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल गायकी को आपने सुना है। तर्ज बनाई है इंदिवर ने और श्यामल मित्रा का संगीत निर्देशन।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: देवेंद्र काफिर का लिखा हुआ ये गीत जयदेव कुमार ने संगीत निर्देशित किया है। जसवीर जस्सी, सोनिया शर्मा और अकाशा सिंह की युगल गायकी में श्रोताओं ये गीत अभी आपने सुना है, स्वीटी बेट्स NRIC। फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत।
1: रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो ये गाओ,

श्रोताओं, ये गीत है फिल्म भ्रष्टाचार से सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की युगल गायकी को आपने सुना है। तर्ज बनाई है आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, अगर आपको भी तलाश है ऐसे मधुर संगीत की तो ट्यून कीजिए आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल।

शुदों ये गीत है फिल्म तमाशा से मीका सिंह और नक्श अजीज़ की आवाज़ें आपने सुनी हैं। धुन बनाई है इरशाद कामिल ने और एआर रहमान ने संगीत निर्देशन किया है।

0: श्रोताओं, ये गीत था फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की गायकी को आपने सुना है। बोल लिखे आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत निर्देशन किया था। श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम भी अब यहीं संपन्न होता है।
1: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोतों, अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद ले रही थी। ये आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात सुनेंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आर एन रवि, मुख्यमंत्री

0: मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जाँच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री

0: दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
6: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा।

0: राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, आज बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में लीजिए सुनिए रेडियो श्रोता पूर्वी ठाकुर से दीपेश यादव की बातचीत।
3: आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे। इन 90 वर्षों के सफर में कितनी ही पीढ़ियों ने बहुत कुछ सुना और उसे अपनी यादों में उतारा, लेकिन इन 90 वर्षों ने केवल हमारे पुराने श्रोताओं को ही रेडियो का साथी नहीं बनाया, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी भी रेडियो के अपने दौर की साक्षी रही है। मैं दीपेश यादव आज के इस विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी 890 का होस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे एक और श्रोता की रेडियो से जुड़ी बातें और बातों में उनकी यादें। लेकिन आज की हमारी मेहमान रेडियो की कोई बहुत पुरानी श्रोता नहीं है जिन्होंने आकाशवाणी का केवल वो दौर देखा जब केवल रेडियो का दौर था या टेलीविजन था, लेकिन केवल दूरदर्शन तक सीमित। ये हमारी वो मेहमान है जो आकाशवाणी के साथ साथ प्राइवेट रेडियो चैनल और TV पर निजी चैनलों की भरमार के बीच पैदा हुई, साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया इन्हीं की पीढ़ी के आविष्कार हैं, लेकिन आकाशवाणी से इनका नाता उतना ही घनिष्ठ है जितना पुरानी पीढ़ी का। आज आकाशवाणी 890 के इस अंक में रेडियो के प्रति युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण और रेडियो से जुड़ी स्मृतियों पर हम बात करेंगे हमारी आज की मेहमान युवा रेडियो श्रोता पूर्वी ठाकुर जी से। तो सबसे पहले पूर्वी जी, आपका हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी 890 के इस अंक में बहुत

0: बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: पूर्वी जी, सबसे पहले बात करें मुलाकात की, यानी रेडियो से आपकी मुलाकात। जमाना है ओटीटी और रील्स का। आप जिस एज में हैं, बिल्कुल युवा हैं, ओटीटी और रील्स लगभग सभी के ऊपर हावी हैं, चाहे वो पुरानी पीढ़ी हो, नई पीढ़ी हो। हालांकि ओटीटी और रील्स जब आए, उससे आप थोड़ा पहले के समय से देखती आ रही हैं चीज़ों को। तो इस जमाने में आपने पहली बार आकाशवाणी को कब और कैसे सुना?
1: आकाशवाणी से मेरी मुलाकात बचपन में हुई थी। मुझे याद है जब हम टीवी कभी चलाया करते थे तो महाभारत या श्री कृष्ण की कहानी में हमें देखने को मिलता था कि आकाश से कोई आवाज़ आ रही है जो सब कुछ बता रही है कि क्या होने वाला है। जैसे श्री कृष्ण के लिए बताया गया था कि वो कंस का वध करेंगे, तो वैसे ही मुझे लगता था कि आकाश से कोई आवाज़ सबके लिए चलती है। और हमारे दादाजी भी जब रेडियो सुना करते थे तो मुझे लगता था ये वही जादुई आवाज़ है जो हमें भी सारी सूचना, समाचार और खबर दे रही है कि क्या होने वाला है, ताकि हम लोग प्रिपेयर रहें।
0: तो आपको लगता था कि आकाशवाणी वही आवाज़ है जो आकाश से आ रही है,
1: जो इसका नाम पड़ा है वही। तो वो रेडियो मुझे याद है कि हमारे घर में, किचन में, आंगन में कभी भी एक कांस्टेंट चीज़ थी जो चलती रहती थी और सारे परिवार को बांध के रखती थी। दादाजी, पापा, हम लोग सब साथ मिलके सुना करते थे।
0: आपके ज़माने में प्राइवेट रेडियो चैनल्स की भरमार है। प्राइवेट रेडियो चैनल्स और आकाशवाणी दोनों आपने सुने हैं, दोनों की आवाज़ में क्या मूल यानी बेसिक अंतर आपको लगता है?
1: देखिए, प्राइवेट चैनल की अपनी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसमें तेज़ी है, शोर है, जो शायद छोटे और थोड़ी से देर के एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन आकाशवाणी की आवाज़ में जो गरिमा है, ठहराव है, गहराई है, वो मुझे लगता है कि कहीं और नहीं मिल सकती हमें। यहाँ शब्दों की मर्यादा का पालन किया जाता है, भाषा की शुद्धता पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया हुआ है। और प्राइवेट चैनल्स मुझे हमेशा बस इंटरटेनमेंट फोकस्ड लगते हैं, लेकिन आकाशवाणी जो है वो हमें सूचना, समाचार और हमारी संस्कृति से हमें जोड़े रखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट चैनल्स जो है वो आज की भीड़ है, शोर है, और जो आकाशवाणी है वो एक फैली हुई नदी है, ज़्यादा अपनत्व फील होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, इसमें हर पीढ़ी के लिए अलग अलग सेगमेंट है। अगर बच्चे कुछ सुनना चाहें तो वो अपना कोई प्रोग्राम चला सकते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो अपना कुछ देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब लोगों को बांधे रखता है आकाशवाणी।
0: क्या आपको लगता है कि आकाशवाणी का नाम सुनते ही मन में एक रेट्रो कूल वाली फीलिंग आती है?
1: जी, आज के डिजिटल दौर में अगर हम लोग हैं, हमारी जनरेशन भले ही कितनी एडवांस हो गई हो, पर आज भी हमें वो टाइटल्स जैसे रेट्रो, यूनिक, विंटेज, ये सब आज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग वापस पीछे जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आकाशवाणी तो एक ऐसा ही फैक्टर है, बिल्कुल वो ब्लैक एंड वाइट ज़माना, तो उससे ज़्यादा रेट्रो तो कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे विंटेज होना ही एक अपने आप में स्टाइल स्टेटमेंट है।
0: एक युवा होने के चलते आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा किस सेगमेंट को आप पसंद करते हैं?
1: बीइंग अ जेन ज़ी, मुझे तो लगता है कि हम लोगों को सिर्फ लाउड म्यूज़िक पसंद होता है, पर मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ तो मुझे ये रेडियो सुनना काफ़ी पसंद है। एक्सपर्ट्स जब अपने लाइफ के बारे में पॉडकास्ट शेयर करते हैं तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उससे गाइडेंस मिलती है हमारी लाइफ को भी लेकर, तो वो सेगमेंट मैं ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। आकाशवाणी के जो समाचार हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। युववाणी जैसे, इस पर हिस्ट्री, मोटिवेशनल चीज़ें जो हमको सब बताई जाती है, वो हमें ज़्यादा अपडेटेड रखती है। इन्फॉर्मेशनल चीज़ें जो शेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पुराने और सभी कार्यक्रम जो भी हमें हमारे कल्चर से जोड़े रखते हैं। हम लोग आजकल अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, तो सबसे जो शॉर्ट तरीका है करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने का, क्या चल रहा है समाज में, तो उसके लिए आकाशवाणी को मैं प्रेफर करती हूँ और सुनना पसंद करती हूँ।
0: आज की युवा पीढ़ी भागती दौड़ती तेज युवा पीढ़ी है। रेडियो सुनने के लिए हमारी ये युवा पीढ़ी, और उसको रिप्रेजेंट करती हैं आप। रेडियो सुनने के लिए आप कितना समय दे पाती हैं और उसका माध्यम क्या है, ट्रांजिस्टर या न्यूज़ ऑन एयर है?
1: रेडियो तो मैं अगर बात करूँ तो मेरे रूममेट की तरह है यहाँ पर। ट्रांजिस्टर्स तो काफ़ी पुराने हो गए, बट हाँ, यहाँ मैं जैसे अपने काम के लिए अपने घर से दूर रहती हूँ, मेरा यहाँ और कोई साथी नहीं है, तो ऐसे में जब भी मुझे अकेला फील होता है या मुझे स्टडीज से ब्रेक लेना होता है, एक रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, तो फिर मैं रेडियो को चलाती हूँ। और सबसे खास बात यह कि जब हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मोबाइल में ही न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जो बहुत कन्वीनियंट है। और ऐसा भी नहीं, आप कभी भी ट्रैवल करते टाइम या अपना वर्कआउट करते टाइम उसको बहुत इजीली सुन सकते हैं, तो कोई और चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उसमें।
0: और आपका समय

0: होता है जिस समय आप रेडियो सुनती हैं, मोस्टली जब सुना जाता है
1: सुबह के टाइम? मैं रेडियो जब सुनती हूँ तो सुबह के टाइम एक हमारी अलग एनर्जी होती है, तब हम सुबह की न्यूज़ सारा खबरें सब इकट्ठा करके रख सकते हैं। रात के टाइम पे मुझे थोड़े फिर गाने सुनना, जब स्लो डाउन हो रहा होता है सब कुछ, तो गाने और ऐसे शांत से कोई कार्यक्रम सुनना ज़्यादा पसंद है।
0: आजकल पॉडकास्ट का बहुत चलन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, प्राइवेट एफएम्स हो, पॉडकास्ट बहुत आते हैं। आकाशवाणी के पुराने आर्काइव्स और नाटक इधर पॉडकास्ट, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है और क्यों?
1: पॉडकास्ट तो आजकल की नीड है, हर कोई पॉडकास्ट ही सुन रहा है, तो मैं भी वही सुनती हूँ। पर जब भी मुझे टाइम में पीछे ट्रैवल करना होता है, एक अलग लेवल का सिनेमा देखना होता है, सुनना होता है, तो फिर मैं पुराने आर्काइव्स आकाशवाणी के सुनना पसंद करती हूँ। वो जो लेवल है वो अभी के पॉडकास्ट मैच नहीं कर सकते। देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म विविध भारती जो है, उसमें दोपहर के समय जो सारे पुराने आर्काइव्स जो भी नाटक आते हैं वो भी मैं कभी कभार अपने वर्क प्लेस पर जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है तब मैं सुन लेती हूँ।
0: कौन कौन से रेडियो स्टेशन और कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं या यूजुअली सुनती हैं?
1: ऑल टाइम फेवरेट स्टेशन मेरा विविध भारती है। पहले जब मैं कोटा में रहती थी तो मैं कोटा आकाशवाणी सुना करती थी, अब जब यहाँ मेरी ज़िंदगी एक रूम में कैद हो गई है तो यहाँ की अपडेट्स के लिए, मेरे को इस शहर से जोड़े रखने के लिए मैं झालावाड़ आकाशवाणी सुनती हूँ। डेली अपडेट्स, जो भी क्षेत्र के सारे कार्यक्रम हैं वो मुझे सिर्फ रेडियो पे सुनने से सब पता लग जाता है, तो इससे अच्छी बात तो और कोई है नहीं।
0: और कौन कौन से प्रोग्राम आप यूजुअली सुनती हैं?
1: एक प्रोग्राम है महिला जगत, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि उसमें महिलाओं के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें बताई जाती है, उनकी स्किल्स, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, जो भी उनको करना है उसके लिए सारी जानकारी उन्हें दी गई है कि महिलाएं अपने बिजी शेड्यूल में, उन्हें कुछ स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक साइड में एक आवाज़ सुननी है और आप अपना काम कर सकते हो। हाँ, और हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट जो भी हैं वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनना पसंद है। कोविड के बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अवेयर हो गए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं उन तक भी हेल्थ की सारी जो जानकारियाँ पहुँचाई जा रही हैं वो मुझे सुनना काफ़ी पसंद है। छोटे बच्चों के लिए जैसे इनका स्पेसिफिक प्रोग्राम है बाल संसार या छोटी फुलवारी, वो मैं अपने छोटे भाई बहनों को कभी चला कर दे देती हूँ, उसके चलते मेरी भी जो बचपन की मेमोरीज़ है वो उनके साथ बैठ के ताज़ा हो जाती है। हेलो आकाशवाणी, हेलो फरमाइश जैसे जो प्रोग्राम्स है वो भी बचपन की याद दिलाते हैं, जैसे रंगोली एक कार्यक्रम था तो उसमें भी हम अपनी चिट्ठी भेजकर अपनी फरमाइश करते थे, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ लगती थी। फ़ोन पर भी हम अपनी जो भी गाने की फरमाइश है वो बताया करते थे, ये तो बहुत अच्छी बात लगती थी कि मेरी पसंद सब सुनेंगे। और हम जैसे यूथ के लिए इनका स्पेशल प्रोग्राम युववाणी जो है उस पर सारे रीजन्स कवर किए हुए हैं, जो सॉन्ग हो गया, कुछ मोटिवेशनल हमें सुनना है, हिस्ट्री हो गई, तो डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कुछ कांस्टेंट चीज़ नहीं है, आप सब कुछ सुन सकते हैं।
0: अच्छा, आप आकाशवाणी कोटा सुनती रहे हैं, आप आकाशवाणी झालावाड़ अभी सुनती हैं, विविध भारती आपका फेवरेट स्टेशन है, रेडियो सुनते समय आज सोशल मीडिया के ज़माने में आकाशवाणी केंद्र के सभी केंद्रों के अलग अलग पेजेस सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, आप किन किन आकाशवाणी केंद्रों को फॉलो करती हैं या आपने किया?
1: मेरे को ऐसा लगता है कि देश की विरासत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी सपोर्ट करना हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसीलिए फिर जैसे ये जो चैनल्स हैं विविध भारती, आकाशवाणी कोटा, आकाशवाणी झालावाड़, ये सब मैंने फॉलो किए हुए हैं। और मुझे अलग अलग आवाज़ को अलग अलग अंदाज से जिस तरह से लोग पेश करते हैं वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद फिर एक क्यूरियोसिटी भी जाग जाती है कि इस आवाज़ के पीछे का कौन सा चेहरा है, कौन सी शख्सियत है इसके पीछे, तो वही कि कुछ आरजेस का अंदाज इतना पसंद आता है कि फिर मुझे उन्हें जानने की काफ़ी इच्छा होती है, तो फिर मैंने उनके सारे चैनल्स फॉलो किए हुए हैं। इसी तरह से मैं आपसे भी परिचित हुई, आपकी आवाज़ सुनने के बाद मैंने आपको फॉलो किया।
0: बहुत थैंक यू कि आपने मुझे भी फॉलो किया है पेज के ऊपर। विजनरी सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट चैनल्स और रेडियो में क्या ज़्यादा बेहतर है और क्यों?
1: सोशल मीडिया मुझे लगता है कि आपको कंटेंट दिखाता है, ठीक है, सामने रखकर आपको बिजी रखता है, पर रेडियो मुझे लगता है कि आपको फ्री रखकर भी आपको बांधे रखता है, आपकी इमेजिनेशन से एक इमेजिनेटिव दुनिया में ले जाता है, आपको बाउंड कभी नहीं रखता वो, आप अपना काम करते हुए सुन सकते हैं। विजनरी कॉन्टेंट में आप मानसिक रूप से या आँखों से आप थका हुआ महसूस करेंगे, पर रेडियो आपको हमेशा फ्री रखेगा, आपका स्क्रीन टाइम भी कम ही करेगा,

0: और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसीलिए चलाए रखती हूँ अपना काम करते हुए, सिर्फ सुनना है आपको, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगेगा आपका।
1: आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: सबसे पहले तो आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने की ढेरों शुभकामनाएं। आकाश की वाणी, जैसा मैंने कहा, जब आकाश कभी नहीं खत्म हो सकता तो उसकी वाणी कभी कैसे खत्म होगी, तो ऐसे ही गूंजते रहिए, हमारा साथ निभाते रहिए। और एक आप ही हैं जिसने भारत को, हमारे जीवन को, पूरा बदलते हुए को विटनेस किया है। हम शायद वो कभी नहीं कर पाएंगे, पर उसका जो बीच बीच का फेस है वो हमें आपके थ्रू पता लगता चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बने रहिए।
1: आकाशवाणी का साथ देने के लिए आप सब हमारे श्रोता जितने भी हैं, आप हैं हमारे और जो श्रोता सुन रहे हैं, हमारे जितने भी श्रोता जो अभी नहीं भी सुन पा रहे हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद जो 90 सालों से आकाशवाणी का साथ निभाते चले आ रहे हैं। और आप लोगों की वजह से हम आकाशवाणी के प्रोग्राम्स को इतनी तन्मयता से बनाते हैं कि हम हर बार फील करते हैं कि हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को कैसे पसंद करेंगे। आप अगर हमारे श्रोताओं से रेडियो से जुड़ी कोई बात या मोमेंट या पसंदीदा रेडियो जॉकी के बारे में कुछ शेयर करना चाहें?
0: मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो बस एक क्लिक करके आप उस पर सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। कभी नेट बंद है, कभी लाइट चली गई है, बारिश आ रही है और आप अकेले हो, तो एक कंपेनियन तो आपको हमेशा मिलेगा ही, कि जो आपको जोड़े रखेगा, अकेला महसूस नहीं होने देगा। फिर आप चाहे आप उस पर खबरें सुनो या गाने सुनो। बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके साथ अक्सर बातचीत करने वाले लोग नहीं होते, सब अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो याद है मुझे कि जो हमारा रेडियो था वो दादाजी का एकमात्र कंपेनियन था। कभी वो ख़राब हो जाता था तो उनका दिन नहीं बीतता था, और एक दिन वो जब ख़राब हो गया था और हमारी गलती की वजह से ही टूट गया था, तो हमें छुपाना पड़ा था और दूसरा रेडियो लाकर उन्हें देना पड़ा था। तो यही है कि पर्सनली मुझे तो उन सभी की आवाज़ पसंद है जो शब्दों को काफ़ी ज़्यादा प्यार और नाप तोल कर बोलते हैं। लाइफ में एक मोमेंट ऑफ पीस की तरह है मेरे लिए रेडियो।
1: जी पूर्वी जी, आपसे बहुत गंभीर, हल्की फुल्की और रोचक बातें हुई, और बड़ा अच्छा लगा आज की चेंजेस के ये विचार जान के कि रेडियो के बारे में उनके अंदर अभी भी ये क्यूरियसिटी, उनके अंदर रेडियो को लेकर रोचकता अभी भी जिंदा है। मन कर रहा है कि आपसे बातें यूं ही चलती रहें, लेकिन समय हमें अपने मन के करने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ एक शेर मेरे जहन में आ रहा है हमारी सारी बातचीत में, और समय जैसे रुके हुए है। इच्छा तो बहुत है कि आपसे और लंबी चौड़ी बातें चलें, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन सुदर्शन फ़ाकिर का एक शेर मेरे दिमाग में यहाँ आया कि जैसे समय हो गया हमारे कार्यक्रम का, तो ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। आपके और हमारे श्रोताओं के वक्त की कदर करते हुए आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। और अब इजाज़त लेते हैं अपने श्रोताओं से आपसे कार्यक्रम समाप्त करने की। अपने साथी दीपेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी भेंट वार्ता, रेडियो श्रोता पूर्वी ठाकुर से दीपेश यादव की बातचीत। हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

चहक रहे हैं पंछी दमे, संदेश नया ये लाए हैं, धरती जल और हरियाली को मिलकर सभी बचाए हैं। नारी जब संकल्प कर ले तो बदले घर आंगन सारे, प्रकृति रक्षा का दीप जले फिर खुशहाल हो जग सारे। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत अभिनंदन सुप्रभात आज का अपने कार्यक्रम महिला जगत में, और मैं हूँ आप आज आपके साथ आपकी रेडियो सखी चंदा। बहनों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। सखियों, प्रवासी पक्षी हमारी प्रकृति का अनमोल उपहार है। हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये पक्षी हमारे देश के जलाशयों तक पहुंचते हैं, परंतु बहनों बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों का सूखना और प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग इन पक्षियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। बहनों, ऐसे समय में हम महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि घर और समाज दोनों को प्रकृति से जोड़ने का जो काम है वो महिलाएं, जो नारी हैं कहें, वो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। बहनों, यदि हर घर की महिला छोटे छोटे संकल्प ले, जैसे कि घर के आसपास पानी के पात्र भरकर रखना, पेड़ पौधे लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और साथ ही साथ बच्चों को पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना, प्रकृति के महत्व को समझाना, यदि ये सभी काम एक महिला करे तो प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सकता है। बहनों, गाँव और शहरों में हम महिलाएं मिलकर जलाशयों और पार्कों की स्वच्छता के लिए जागरूकता फैला सकती है और प्रयास कर सकती है। और बहनों, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हम और आने वाली पीढ़ी जो हैं, पीढ़ियां हैं, वो पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुन सकेंगे। वरना अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हम इन पक्षियों की आवाज़ को सिर्फ गीतों में सुन पाएंगे, जैसा कि अभी को हम आपको ले चलते हैं और गीत माध्यम के साथ सुनाते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: बहनों, एक बार फिर आपका महिला जगत कार्यक्रम में स्वागत। नारी जैसे सहजती है घर आंगन का हर कोना, वैसे ही प्रकृति को सहजना होगा हम सबको। जी हाँ बहनों, आज जैसा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है और हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ प्रवासी पक्षियों की चहचहाट घटती जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसी विषय पर हमने अधिक जानकारी के लिए बात की श्री राजपाल जी शर्मा से। तो आइए सुनते हैं ये रोचक भेंटवार्ता। आपका हमारे महिला जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: नमस्कार, मेरा नाम राज्यपाल शर्मा है और मैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में कार्यरत था, वहाँ से सेवनरित हुआ हूँ और मैं भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी इनटेक के झालावाड़ चैप्टर का कन्वीनर।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पक्षियों की चहचहाट जो आज हम देख रहे हैं कि कम सुनाई देती है, या यूं कहें कम ही जगह हम पक्षियों की आवाज सुन पाते हैं। आज आप रिटायर हो चुके हैं, बचपन में आपने कौन कौन से पक्षियों की चहचहाट सुनी और कौन कौन से पक्षी देखे, और आज जो बदलाव आ रहा है, कम हो रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं
1: आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे देखते देखते झालावाड़ में जो पक्षी थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आबादी का विस्तार हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं और पक्षियों के लिए जो आवास होना चाहिए प्राकृतिक, वो नष्ट होता जा रहा है, इसलिए पक्षियों की कमी होती जा रही है। दूसरा, जो आपने प्रवासी पक्षियों की बात करी, तो झालावाड़ हमारा ऐसा क्षेत्र है और यहाँ पर तालाब, नदियाँ, झीलें बहुत ही प्रचुरता में हैं और यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से अनूठा है, इसलिए यहाँ का जो वातावरण है वो पक्षियों के लिए बहुत ही अनुकूल है और जितने पक्षी यहाँ आज भी देखे जाते हैं वह दूसरी जगह दुर्लभ है। रहा सवाल प्रवासी पक्षियों का, तो हमारे यहाँ 4-5 वेटलैंड ऐसे हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षी प्रचुरता में आते रहे हैं, लेकिन अब दिन पे दिन उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। अभी प्रवासी पक्षियों में हमारे यहाँ बारे रेड गूज, ग्रे लेक गूज, जो करीब करीब हिमालय से ऊपर हजारों किलोमीटर दूर से रूस के साइबेरिया क्षेत्र से यहाँ आते हैं और वो यहाँ प्रवास करते हैं, उनकी संख्या भी अब कम होती जा रही है। उसका कारण ये भी है कि एक तो युद्ध की वजह से भी है, दूसरा ये पर्यावरण का जो संकट है सभी जगह पूर्व विश्वव्यापी है, उस वजह से भी ये कमी आ रही है। दूसरी बात आपने कही कि बचपन में जो हमने कौन कौन से पक्षी देखे, तो हम इस जो झालावाड़ के निवासी हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर स्टेट समय से ही वन्य जीवों का और पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त संरक्षण यहाँ दिया जाता था। तो स्टेट टाइम में यहाँ पर एक सर्वे किया था तो 300 से ज्यादा भी पक्षियों की यहाँ पर उपलब्धता थी, जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। रहा सवाल यहाँ हमारे घर पर, मैंने बचपन में काफी पक्षी देखे हैं। हमारे यहाँ पास में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर मोर रहते थे और हमारे घर पे ही मोर नृत्य करते थे मौसम के अनुसार। कोयल है, कौवे हैं, गोरैया है, तोता है, कई तरह की मैनाएं हैं, गोल्डन ओरियल है और कई तरह की चिड़ियां जो विलुप्त हो गई हैं, अब आना बंद हो गई है हमारे यहाँ, तो उनकी संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। इतनी चिड़ियां यहाँ होती थी, गोरैया तो हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में थी घर पर ही, और सुबह इनकी चहचहाट होती थी तो उससे नींद खुलती थी, जैसे घुंघरू बज रहे हैं इस तरह से वो प्रातःकाल अपनी आवाज सुरमई आवाज निकाल के करती थी, और शाम के समय जब वो वापस लौटती थी तो हमारे यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं, पेड़ हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर पत्ते पत्ते पर वो बैठती थी, मतलब जितने पत्ते नहीं उससे ज्यादा हम उनको गोरैया को देखते थे बैठे हुए। और इनका जो कमी हो रही है उसका कारण ये है कि जो मकान आजकल बन रहे हैं, पक्के मकान बनने लगे, पहले झालावाड़ में कत्तलपोश मकान होते थे, मिट्टी के मकान होते थे, तो उनमें इनको इनका घोंसला बनाने के लिए, आवास के लिए इनको पर्याप्त जगह मिलती।

0: इसलिए अब वो जगह कम होती जा रही है, तो इनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमारे यहाँ जो चिड़ियाँ थी अब बहुत कम आ गई, गिनती की रह गई हैं। तो उसका कारण मेन यही है कि आबादी का विस्तार हो रहा है, मकान पक्के बनते जा रहे हैं और इनको जो आवास था प्राकृतिक वो नष्ट हो रहा है, इसलिए इनकी संख्या कम होती जा रही है।
1: आपने इतनी अच्छी तरह से जानकारी दी कि कौन कौन से पक्षी हमारे यहाँ उपलब्ध थे और कैसे समय के साथ साथ ये कम होते जा रहे हैं।
0: हमारे घर पर जो पक्षी आते थे उसमें जैसा मैंने बताया कि मोर काफी संख्या में होते थे, कोयल है, कौवा है, लाफिंग डो, डेकर जिसको कहते हैं, ये तो आज भी आती है, किलकिला यहाँ पर आता है, तोता, टुइया जो रेड हेडेड होती है, लाल रंग का सिरा होता है, वो भी काफी मात्रा में आती थी जो लुप्त हो गई हैं। इसके अलावा जंगली कबूतर, पालतू कबूतर काफी थे इधर, बगुले, टिटोड़ी, चील, रात में उल्लू भी यहाँ बैठा करते थे घंटाघर के ऊपर, गिद्ध भी यहाँ पर दो तीन गिद्ध रहते थे, हरियल, मैना, कॉमन मैना, ब्राह्मणी मैना, रॉबिन और ब्राउन चैट। ब्राह्मणी मैना तो हमारे यहाँ घोंसला भी बनाती है, और एक हुक्का पक्षी होता है, ग्रेट कोकल कहते हैं उसको, और टेलर बर्ड, सन बर्ड और गोरैया तो बहुतायत में है ही। इसके अलावा ये वुड पेकर और शिकरा ये भी काफी हमारे यहाँ आते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं।
1: आपने इतने सारे पक्षियों के नाम बताए और आपने देखे हैं अपनी आंखों से, तो ये तो आपका सौभाग्य है। लेकिन आज जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, उसमें तो शायद कुछ ही पक्षी अगर हम आप पूछोगे तो वो नाम बता पाएंगे, और सिर्फ जो किताबों में ये पक्षी हैं इन्हीं से ही जान सकते हैं कि वुड पैकर ये होता है, वो इस तरह से घोंसला बनाता है। मोबाइल ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक की नींद जो है वो मोबाइल के ट्यून के साथ उठते हैं और शाम को उसी के साथ सो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो आज बच्चों से लगाकर बड़े जो हैं प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अगर आप बच्चों को कहो पार्क में चलो, आपको वहाँ पर बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे, तो वो मना कर देते हैं। तो इससे आज हम बच्चों को देख रहे हैं कि छोटे बच्चे से लगाकर बड़ों में चिड़चिड़ापन और एक अजीब सा शारीरिक मानसिक जो कहें तनाव बढ़ रहा है। तो ये पक्षी जो हैं ये हमारे लिए कितना फायदेमंद हैं और किस तरह से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, इसके लिए भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: हाँ, ये बात है, अवश्य है कि बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और ये जो हमारी नई संस्कृति आ रही है मोबाइल की, ये बहुत ही घातक है। और ये चूंकि बच्चे इसमें सहज ही आकर्षित हो जाते हैं और वो एक लत बन जाती है, एडिक्शन हो रहा है बच्चों में, इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाया जाए और हमारी प्रकृति से रूबरू कराया जाए, और यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, तो उनको उनकी जानकारी दी जाए। हम इस मामले में झालावाड़ निवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ जंगल बहुत करीब है, मतलब 10-15 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर आप जंगल में पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी खूबसूरत जगह हमारे यहाँ चाय का चबूतरा वाली पहाड़ी और मंगलनाथ की डूंगरी है, और यहाँ पर जो जंगल विकसित हो रहा है, अब अच्छा जंगल विकसित हो रहा है, और यहाँ पे पक्षी भी अच्छी मात्रा में दिखाई देते हैं। सुबह सुबह या शाम को बच्चों को इन स्थानों का भ्रमण कराना चाहिए, और जो प्रकृति में पक्षी हमको दिखते हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना चाहिए, ताकि उनकी रुचि बढ़े और उनकी जो मोबाइल के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो गया है, क्योंकि उससे उसको दूर करना ज़रूरी है। तो बच्चे जब प्रकृति में रस लेंगे तो अपने आप उनका जो टाइमिंग है, स्क्रीनिंग टाइमिंग, वो कम होगा और बच्चे अपने पर्यावरण से परिचित होंगे।
1: क्योंकि पहले कहते हैं ना कि उस अब सवेरा हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी हैं, लेकिन आज सब घड़ियों के द्वारा, मोबाइल में अलार्म के द्वारा बच्चे से लेकर हम बड़े तक उठते हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, हरियाली से हम दूर हटते जा रहे हैं। तो घर की महिला होने के नाते कैसे बच्चे और परिवार को मोबाइल से दूर रखकर एक महिला जो है वो प्रकृति को से बच्चों को और परिवार के लोगों को जोड़ सकती।
0: माँ को बच्चों की प्रथम गुरु माना गया है, और बच्चे माता से ही संस्कार सीखते हैं। माताएं अगर रुचि लेकर बच्चों को प्रकृति के बारे में बताएं, प्रकृति के करीब ले जाएं, बाग बगीचों में घुमाने ले जाएं, और उनको वन्य जीवों के बारे में, पक्षियों के बारे में विशेष रूप से बताएं, और ख़ास तौर से उनकी आवाज़ कैसी होती है, आजकल तो मीडिया का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, तो बच्चों में उससे सहज ही आकर्षण पैदा होगा और उनकी रुचि उसकी ओर बढ़ेगी। और वो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि लाइव देख सकते हैं हम, अभी ये तालाब के किनारे चल जाएं तो जलीय पक्षी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, उसमें कई प्रकार की बतखें हमारे यहाँ आती हैं, अभी भी एशियन जो बतख है

0: वो देखी जा सकती है खंडिया तालाब में। ऐसे कई सारे पक्षी हैं जो आप तालाब के किनारे बैठ जाएंगे और सुबह से शाम तक या थोड़ी देर भी बैठेंगे तो कई पक्षी वहाँ आएंगे और उनका अवलोकन करना बहुत आनंददायक होगा। जैसे किंगफिशर मछली पकड़ेगा, किलकिला उसको कहते हैं, एक जगह स्थान पर खड़ा स्थिर हो जाता है और जैसे ही नीचे मछली देखता है वो सीधा उसके ऊपर तीर की तरह गिरता है और मछली पकड़ के ले जाता है। तो बच्चे जब इन दृश्यों को देखेंगे तो उनका सहज ही आकर्षण उनके प्रति होगा और उनकी सहज रुचि बढ़ेगी, तो वो निश्चित रूप से प्रकृति की ओर अग्रसर होंगे और प्रकृति के करीब पहुंचेंगे। तो इसलिए उनका जो है स्क्रीन टाइम भी कम होगा और उनका जो है जो प्राकृतिक विकास होगा।
1: इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे प्रयास हमें करने चाहिए कि जो आज प्रवासी पक्षी और साधारण पक्षी जो हैं वो घट रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़े, उनमें हमारी हिस्सेदारी बढ़े, बच्चे भी रुचि ले, तो उसके लिए जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करें ताकि ये पक्षी बढ़े और बराबर बने रहे।
0: जहाँ तक प्रवासी पक्षियों की बात है तो इनका जहाँ जहाँ आवास होता है मौसम के हिसाब से, उन क्षेत्रों को जो मानव जनित क्रियाएं हैं उनसे हमको दूर रखना चाहिए ताकि उनको डिस्टरबेंस नहीं हो और वो अपने सुचारू रूप से वहाँ स्वच्छंद विचरण कर सकें, भोजन उनको सही समय से मिल सके और सही ले सकें। तो वो जब उनको ये सुविधाएं मिलेंगी तो अपने आप वो इस जगह आकर्षित होंगे। और पक्षियों का ऐसा है कि इनका तो जो ब्रेन में ही पूरा सिस्टम होता है, तो हजारों किलोमीटर दूर से ये उसी स्थान पर हर साल आते हैं और वापस उड़ जाते हैं। जैसे कुरजा का है तो कुरजा पक्षी हर साल उसी जगह पे आते हैं और वापस वो यह समय व्यतीत करके वापस उड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। रहा सवाल स्थानीय पक्षियों के लिए, तो उनके लिए जो हमने पक्के मकान बना दिए हैं तो उसकी जगह हम उनके लिए जो छोटे छोटे घोंसले जैसे बनाते हैं, डब्बे रख देते हैं, तो उसमें गोरैया जो है अपना प्रजनन कर सकती है, अंडे उसमें सहज सकती है, तो इस तरह से हम उनको बढ़ सकते हैं। दूसरा जो है पक्षियों के परिंडे बांधना, तो अभी पक्षियों में हम जो है रोज़ सुबह हम जंगल में हमने करीब जो मंगलनाथ की डूंगरी है यहाँ करीब 30-40 हमने परिंडे बांधे हुए हैं। सुबह सुबह हम जाते हैं वहाँ पर, उनको पानी भरते हैं और जब पानी भरते हैं तो तुरंत जब बुलबुल है या कोई दूसरी चिड़िया है, क्रेस्टेड बंटिंग है, वो जब आती है तो हमें बड़ा आनंद आता है उसको देख के कि भाई हमने जो पानी डाला उसका उपयोग हो रहा है और पक्षी जो है इससे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इनका निश्चित रूप से जो है पर्यावरण में इनका सहयोग रहेगा और इनकी जो उत्तरोत्तर इनकी संतति में वृद्धि होगी, ये हमको उससे बड़ा संतोष मिलता है। तो हमको घरों में ही ऐसा प्रयास करना चाहिए पक्षियों के लिए। आजकल जो अवेयरनेस भी आई है, लोग घर में भी परिंडे बांधते हैं और बांध रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि हर पक्षी का जो दाना पानी है वो अलग होता है, हम पक्षियों की आदत बिगाड़ देते हैं। तो जिसको जो पक्षी है जैसे जो दाना चुगती है वो दाने ही चुगेगी और जो चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है वो कीड़े मकोड़े खाएगी, तो हम उनको बाध्य करते हैं कि दूसरी चीज़, हमने देखा है कि नमकीन भी डाल देते हैं लोग चिड़ियाओं को, वो उनकी प्राकृतिक नहीं भोज्य पदार्थ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं करनी है, जो सहज उनका जो भोज्य पदार्थ है वही हम उनको देवें और उनको किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं वो हमको प्रयास करें। जैसे बिल्ली है ये इनकी दुश्मन होती है, तो ऐसी जगह जो रखें डब्बा गोरैया के लिए, तो ऐसे जगह रखें कि जहाँ बिल्ली उसको नहीं करे और वो सुरक्षित रूप से अपना अंडा दे और उसको सहेजे और अपने चूजे उसमें तैयार करे।
1: बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह से हम इन प्रवासी पक्षियों की और हमारे यहाँ जो घरेलू पक्षी पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं।
0: अगर उनको वहाँ जगह उपलब्ध नहीं हो रही है तो हमारे नदी किनारे हैं, अब अभी हम नदी के किनारे के घाट भी जो नदी किनारे की मिट्टी है उसको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। जो जो जलीय पक्षियों का जो जैसे मेंढक है वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, तो वहाँ जब उसका रहवास नष्ट हो रहा है तो वो उसको जल और थल दोनों नहीं मिलेगा तो उसका तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से कई हमारी जो जलीय पक्षी होते हैं वो तालाब के किनारे या नदी के किनारे झाड़ियों में रहते हैं, अगर वो झाड़ियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी तो वो रहेगा नहीं वहाँ पर। तो हमको ये बड़ा ध्यान रखना है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन हम प्रकृति के विनाश के ऊपर हमारा जो विकास है वो आधारित है। तो ये बहुत ही आज आवश्यक हो गया है कि हम इस ओर ध्यान दें और जो पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है उसको हम विशेष ध्यान रखकर उनको हम विकसित करें और उनको नष्ट न करें।
1: महिला जगत कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी बहनें आपको सुन रही हैं उन्हें आप सलाह के तौर पर क्या कहना चाहेंगे जिससे वह किस तरह से इस पर्यावरण को बचा

0: में सहयोगी बने ताकि आने वाली पीढ़ी भी पक्षियों की मधुर आवाज सुन सके।
1: इसके लिए ये आवश्यक है कि माताएं अपना जो आवास है वहां पर छोटे छोटे बगीचा लगाने का प्रयास करें। अगर उनके पास जगह उपलब्धता है नहीं है तो गमले लगाएं, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और बच्चों को खास तौर से ये समझाएं कि तकनीक का उपयोग करते हुए वो पक्षियों और पर्यावरण के बारे में कैसे अवगत हों। वो जैसे मोबाइल देख रहा है बच्चा, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरी जगह उसका ध्यान डाइवर्ट करो, तो ध्यान डाइवर्ट करने से क्या होगा कि वो उसकी बच्चे की जो चीज़ देख रहा है उसकी बजाय वो दूसरे में इंटरेस्ट लेगा। तो जब उसको सहज ही सब चीज़ें दिखेगी कि पक्षी ऐसा बोलता है क्या, कहाँ रहता है, तो उसकी एक जिज्ञासा होगी। तो जब वो उसकी जिज्ञासा जागृत करे कि भाई ये पक्षी मेरे को देखना है, तो उनको समय निकाल कर सप्ताह में एक बार, दो बार, तीन बार वो उसके लिए भ्रमण पर ले जाए। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ झालावाड़ में अभी बड़बेला वेटलैंड पे एक लवकुश वाटिका जो डेवलप की है उसमें वहाँ पर जो पक्षी झालावाड़ में पाए जाते हैं उनके चित्र भी लगाए गए हैं। तो ऐसी जगह उनको अवलोकन कराया जाए जो उनको बच्चों का सहज आकर्षण होगा, वहाँ चित्र भी बने हैं। और खास बात यह है कि जंगल जो है, मैंने अभी पहले भी कहा कि जंगल हमारे यहाँ बहुत करीब है, तो इधर उधर बजाय पार्टी करने के होटलों में जाके जैसे जन्मदिन मनाते हैं केक काटा जाता है, उसकी जगह आप पर्यावरण के बीच में जाएं और वहाँ बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं और उसी के बीच में वो जन्मोत्सव उनका मनाएं, तो बच्चे उस ओर आकर्षित होंगे और प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम बढ़ेगा। और जब बचपन से उनकी आदत ऐसी हो जाएगी तो सहज ही पक्षियों की ओर आकर्षित होंगे और अपने जीवन को रंगारंग बनाने के लिए, बल्कि जीवन में सौंदर्य बढ़ाने के लिए ये चीज आवश्यक है। हम पुराने चित्र भी देखते हैं, जैसे तो पुराने आश्रमों के चित्र बताते हैं, उसमें पक्षी जरूर बताते हैं, मोर बताएंगे, बतख बताएंगे, कबूतर बताएंगे, कोई चिड़िया होगी। जितनी भी पुरानी पेंटिंग्स हैं उनमें आप देखेंगे तो पक्षी और पशु अवश्य दिखाई देंगे। तो ये हमारा प्राकृतिक परिवेश ही था उस समय कि ये आवश्यक चीज़ें थी हमारे यहाँ। और वन उपवन तो हम लगाते ही हैं, तो जब वन रहेंगे तो पशु पक्षी अपने आप आकर्षित होंगे। जैसे वट वृक्ष है उस पे के जो फल लगते हैं, पीपल के फल लगते हैं, तो जो पक्षी इन फलों को खाते हैं वो सहज ही सुर आकर्षित होंगे। जैसे ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा पक्षी होता है जिसको धनेश कहते हैं, इसका धनेश पक्षी बड़ी चोंच का पक्षी होता है और वो आप झालावाड़ में हॉर्नबिल उसको कहते हैं, तो ग्रे हॉर्नबिल हमारे यहाँ है। जब बच्चे उस पक्षी को देखेंगे तो बड़ा आकर्षण है उस पक्षी में, उसकी बड़ी बड़ी चोंच होती है बहुत बड़ी, और जब वो उड़ता है तो ऐसे गोते खाते हुए उड़ता है, और जब पीपल के वृक्ष पे जाके वो जो उसके फल खाता है तो जब बच्चे उसको देखेंगे उसका खाने का, तो बड़ा आकर्षण होगा। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो दूसरी जगह दुर्लभ हैं, हमारे यहाँ जैसे आज उपलब्ध हैं। तो समय निकालकर ऐसी जगह उनको ले जाना चाहिए बच्चों को, तो उनकी जो है ज्ञान भी बढ़ेगा, प्रकृति के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा और उनके जीवन में एक नया सौंदर्य बोध होगा, जिससे उनका जो जीवन है वो अपना जिसको कहते हैं कि रंगीन, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे अपने स्वप्न देखते हैं, तो ऐसे जो प्रकृति के जो देखेंगे तो उसका जो संस्मरण उनको रहेगा बचपन का ही, वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में कायम रहेगा। तो महिलाओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ें और ख़ास तौर से पक्षियों के बारे में उनको बताएं।
0: आपने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया और पक्षियों के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और समय है बहनों अब जानकारी का। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि आर्द्र भूमि में कमी आती जा रही है, तो बहनों राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज यानी कि राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की आज हम जानकारी में बात करेंगे। सखियों वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र जहां पर लंबे समय से तक पानी रहता है, जैसे कि झीले, तालाब, बांध, दलदली क्षेत्र और पक्षियों के प्राकृतिक आवास। सखियों ये केवल जल स्रोत नहीं बल्कि पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। सखी इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्द्र भूमि की पहचान करना

और उनका संरक्षण और प्रबंधन करना है। सखियो, ये प्राधिकरण राज्य के वेटलैंड्स की सूची तैयार करता है और उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है और संरक्षण के लिए योजनाएं लागू करता है। साथ ही ये भी तय करता है कि वेटलैंड क्षेत्रों में कौन सी गतिविधियां नियंत्रित या प्रतिबंधित रह रही है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। सखियो, राजस्थान में सांभर झील, केवलादेल राष्ट्रीय उद्यान, पुष्कर आदि अनेक तालाब प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। इन क्षेत्रों में हजारों विदेशी पक्षी हर साल आते हैं, जिससे जैव विविधता और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलता है। और बहनों, महिलाओं की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सखियों, हम महिलाएं बच्चों को प्रकृति और पक्षी प्रेम संरक्षण की भावना विकसित कर सकती हैं और हमें करनी भी चाहिए। तो इस जानकारी को हमें आगे से आगे बढ़ाना चाहिए कि राजस्थान में वेटलैंड जो अथॉरिटीज है वो कैसे बढ़े, जल जंगल और झील बचे तभी सुरक्षित कल होगा, पक्षी प्रकृति और मानव का सुंदर फिर संबल होगा। वेटलैंड है धरती की धड़कन, जीवन का आधार, इनकी रक्षा में आगे आए हर नारी और परिवार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और बहनों, अब इसी के साथ घड़ी भी इशारा कर रही है कि महिला जगत कार्यक्रम को यही विराम दिया जाए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई चर्चा, भेंटवार्ता और जानकारी के साथ। और आप सभी को एक बार पुनः विश्व पक्षी प्रवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विषय पर हम आगे बढ़ें और बच्चों को भी इसमें जोड़ें। इसी के साथ दीजिए आपकी सखी चंदा को अनुमति। नमस्कार।

0: शुदों अभी आप महिला जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। कुछ ही देर में आप आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। समाचार।

खबरों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और

0: मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया अपितु तो भारत का पवेलियन वहाँ आज पूरी इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच में चर्चा का केंद्र बना। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है।

0: कल चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूटीबी में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जांच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैस कान में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
1: ढाणी गैसकान गांव से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें सभी 3 बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इसी शिकायत के आधार पर सीबीओ साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी 3 बच्चे वहाँ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
0: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार, कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप हमारा दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विशेष कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मून आकाशवाणी के 29वें एपिसोड का प्रसारण रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित श्री राममूर्ति श्रीधर से बातचीत का प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है विविध सेवा के कार्यक्रम।

जावेद अली की आवाज़, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में HMV के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: मजबूर।
1: सबसे दिलचस्प बात ये है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली। दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी।

बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया, ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया, ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी

0: जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं। आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तुम्हें गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी।
1: उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

यही लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी।

इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए, और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है।

ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया? उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा? हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नज़दीक पहुँचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरो के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा? उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है।

ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरव, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा, जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भागदौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरव, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था।

मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्चे मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर

सीधे बच्चे की उंगली पकड़ लेता। दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है। हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें। नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि माँ बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी। आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें

उदास हो गई थी। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डीजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है।

सुरैया की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज़ भूपिंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी, और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर की गाय फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना, कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज़ भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज़ नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूनी ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा, कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर जो कि 1974 की फिल्म है उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है, जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे

0: करियर का स्वर्णिम दौर था उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारते सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है।

आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला माहे लक्षद्वीप

तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं

0: स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है। सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में अब सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओ, अब से कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए

घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8

0: घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
2: तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आज़ाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज़्यादा मिलें तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफ़र। हमारे साथ इस सफ़र में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने

जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और ये आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: बनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी बनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी बनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी, जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तगे से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सुने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो

जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज़ है और उनका साथ अमीर बाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।

चूहा भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबू लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया, जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजने रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है, जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री

बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं। फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

तो इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे, अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीतनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को

0: मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपये और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के

0: निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन घा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
1: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। विविध भारती
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने।
1: On Akashvani. In our series People's Padma on Akashvani, in which we speak to Padma awardees for the year 2026, now we bring you an exclusive interview with Kollakal Devaki Ammaji, who has worked on environmental conservation. In this special program, the interview is conducted by her granddaughter, Sharanya.
2: Namaskaram. In the coastal district of Alappuzha, where the backwaters whispers their resilience, there stands a forest, Kollakal Tapovanam, nurtured and created by a single woman. Today, we have the honor to meet a true environment legend, Srimati G. Kollakal Devaki Amma, a 92-year-old from Alappuzha district of

अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसे हमने रिले किया था दिल्ली केंद्र से। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से FM 103.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
4: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है?
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या? तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी, तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती। वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बच

0: पन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो। डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई शिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले। लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: शिंगारम, हाँ? शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम शिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार
1: तो।
3: की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम शिंगारम को नहीं जानते।

0: जिस शिवकामी के नाम ये मनियाड़ो है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनियाड़ो फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
1: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: हाँ, लाओ रुपए।
1: सिंगारम, ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: अरे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ? देखना ये सिंगारम क

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माताजी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।

0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारक? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने?
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।

0: अरे सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है?
3: देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
3: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा ये बात है।
0: छोड़
2: दे,
4: छोड़ दे मुझे। चेहरा बन गया, तुझे मैं छोड़ समा डालूंगा।
1: अरे वाह, अरे दागी ने मार डाला, अरे बचाओ बचाओ।
4: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे, दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
4: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं दो चार और हाथ उधर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
1: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
5: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
5: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
5: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
5: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी

0: भी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, अब वो पद्मा श्रृंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
1: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
1: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब, ओह पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
2: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
1: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई?
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं, जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाय पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुट जाऊँगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज़्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक तो मैं पहुँच जाऊँगी और गाने भी पेश कर पाऊँगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ये थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
2: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
2: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ,
2: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
2: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
2: मुहूर्त माना,
1: क्या बात,
2: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: क्या बात है
2: जी,
1: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी।
2: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी से के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ, हाँ,
2: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
1: जी,
2: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली तू मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ जरूर गाओगी।
1: क्या बात,
2: बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
2: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
2: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये।
1: हाँ,
2: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, जो आपने जितने शो किए हैं

0: की बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
1: हाँ जी
0: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
1: हाँ जी
0: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
1: जी
0: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
1: राइट।
0: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
1: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे
0: हाँ
1: वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो
0: ओ
1: जो
0: क्या बात
1: आई
0: है,
1: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
0: अलग अलग
1: गाना
0: गायिकाओं ने अलग
1: है।
0: अलग
1: हाँ
0: मौके पे इसे
1: ऐसे मैं
0: गाया है।
1: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
0: हाँ
1: अलग अलग
0: हाँ
1: गायिकाओं के गाने हुए
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: झलक,
0: हाँ
1: उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा।

0: बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना।
1: गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे इसे
0: ऐसे
1: गाया
0: मैं
1: है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: कहा मेरे पिताजी ने बाहर होटल में 4 आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
1: अच्छा
0: लेकिन
1: हाँ
0: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर
1: अच्छा
0: में।
1: अच्छा
0: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
1: जी जी
0: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
1: हाँ
0: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
1: जी
0: मुझे
1: जी
0: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
1: अच्छा
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
1: अच्छा
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
1: जी
0: और
1: जी
0: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
1: ओ
0: अगर दादर में क्लास होता
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
1: अच्छा
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
1: वाह
0: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
1: जी
0: वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
1: जी जी
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
1: हाँ
0: दिल्ली में,
1: हाँ
0: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा
0: संगीत शारदा,
1: जी जी
0: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी,
1: ओ
0: जी मेरी
1: अच्छा
0: आवाज़ ज़रा भारी थी, जाड़ी थी,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पुरुष के गायक के लायक थी,
1: अच्छा
0: और हाइट भी अच्छी थी,
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी जी जी
0: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
1: हाँ
0: स्कूल
1: चूंकि ये महिला विश्वविद्यालय
0: के
1: है
0: महिला विश्व
1: तो
0: नहीं
1: सारे
0: वो ये स्कूल की बात कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
1: अच्छा
0: तो वो हमने उधर किया
1: ओहो
0: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
1: हाँ
0: दिल्ली गई यूथ
1: क्या बात
0: फेस्टिवल के,
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी
1: अच्छा
0: फ्रेंड्स वगैरह थे
1: हाँ
0: साथ,
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था
1: क्या बात
0: बहुत
1: है।
0: मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर
1: सके।
0: जरूर,

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। अच्छा, मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब ऐसे।
0: जी, जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ, हाँ।
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती,
1: पुरुष लोग तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
2: इस
1: नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था,
1: हम
2: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटे से वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
2: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ,

0: फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
1: जी
0: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो. एमए में इंटर म्यूजिक था
1: हाँ
0: एसएनडीटी में,
1: हाँ
0: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई. और
1: वाह
0: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी
1: हाँ
0: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है कि जाओ
1: हाँ
0: कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी
1: अच्छा
0: बच्चों को.
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो 62 में मैंने एमए किया फिर.
1: वाह
0: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ.
1: अच्छा
0: हाँ, तलत साहब के साथ, एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जाप गाने गाइए, कुछ फंक्शन
1: हाँ
0: हुआ लायंस क्लब
1: जी
0: का,
1: जी
0: तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी कूदते
1: दौड़ेगी
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी.
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, तीन
1: क्या
0: महीने
1: बात
0: का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात
0: और दो बेटियां, एक
1: हाँ
0: चार
1: हाँ
0: साल
1: हाँ
0: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं
1: हाँ
0: बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से.
1: हाँ
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके,
1: जी
0: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
1: अच्छा
0: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे.
1: वाह
0: बहुत मजा आया
1: क्या बात
0: टूर
1: है।
0: में, उनसे वो सीखने को मिला.
1: तलत साहब को
0: और
1: आपने याद
0: तलत
1: किया
0: साहब तो
1: तो कोई गाना उनका
0: ओ
1: इस वक्त हम सुनाए अपने
0: ओके
1: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे.
1: जी
0: हाँ
1: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतने अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का।
0: हाँ।
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
0: हाँ।
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी, जी।
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको
0: जी, जी।
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है, इधर उधर इधर सब घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे
0: जी, जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये लोगों सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
1: ड्यूएट नहीं गाया,
0: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों
0: टीका
1: के
0: टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओहो,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी,
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी,
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए, अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा,
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ,
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: अच्छा,
1: मेरी सब सहेलियाँ, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो हो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए, कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो, वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है, मेरी आवाज़ नहीं जाती। आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज़ जाती है, काली एक, काली पाँच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा। करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो,
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है।
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा,
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ,
1: याग्निक का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर हैशा, इस फिल्म का
1: दम
0: गाना
1: लगा के
0: है।
1: है
0: जी
1: उसका
0: जी ये
1: पे।
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ,
0: हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: या
0: क्या? आप
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं किया आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ
1: गीता
0: हाँ
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है
0: आशा जी
1: गीता
0: का
1: दत्त।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी
1: हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: हाँ
1: चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे
1: गली
0: हो जाते
1: चौड़े
0: हैं,
1: में।
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकतें, फिर

0: नहीं गले सर, ये तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ समझो वैरायटीज वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
1: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ,
0: वो तो गाओ, नकल नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है और वो हिसाब से बहुत जरूरी है, आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी
1: बिल्कुल सही।
0: तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
1: जी जी,
0: वो क्यों करते थे इतना,
1: बिल्कुल
0: ऐसे गाते थे ना,
1: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
0: श्री रामचंद्र,
1: तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी, आपने उनके साथ शो भी किया,
0: एक शो किया बड़ौदा में,
1: अच्छा
0: बड़ौदा में, मन्नदा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
1: जी, जी।
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें, तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी की आवाज़ में जाता होता है किसी की आवाज़ में, तो मैंने मन्नदा को पूछा कि मन्नदा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके,
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी,
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में, बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी येशील सजणे सजने माझाच पाठी,
1: बिल्कुल उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत, तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने ये अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर लाइन में,
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
0: हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द जिसे मॉड्यूलेशन कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
1: जी जी जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, हो बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिरुळी शार, बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिरुळी शार, बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला, झुलवित राहील पापा पापा तुलाने मला, नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर,
1: क्या बात है, बहुत सुंदर
0: उनका तो क्या,
1: वाह वाह। मन्नदा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं,
0: जी जी जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस्ड ही होता है, मगर प्योर क्लासिकल गाने जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने,
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं,
1: बहुत सी,
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पे बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है, मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन,
1: वाह
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना था

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा और कभी नन्नी सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखावटी
0: गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रेमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है। तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया, तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
0: जी, जी क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की जी, थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो तो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था। तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस।

0: क्या बात,
1: इसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है
0: हाँ,
1: वो
0: इतना
1: मैं लगा
0: सपोर्ट,
1: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं,
1: बहुत
0: क्या
1: बहुत,
0: बात।
1: मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
0: जी,
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए,
0: जी
1: कंपटीशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए,
0: हाँ
1: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब
0: हाँ
1: साथ मिला,
0: जी,
1: उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए।
0: हाँ
1: बीच में ये सब रफ़ी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए,
0: जी,
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का,
0: जी
1: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी
0: जी
1: कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
0: वाह वाह,
1: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के
0: हाँ,
1: उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
0: क्या बात है। परिवार की बात चली है तो
1: जी,
0: आपकी अगली पीढ़ी में,
1: मेरी
0: आपके
1: दोनों
0: बच्चों
1: बेटियां
0: में
1: मेरे साथ
0: नात,
1: गाती थी
0: अच्छा,
1: शो में
0: हाँ
1: शुरू
0: हाँ
1: से,
0: हाँ
1: मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरे मेरा ही वक्त हुआ मैं कॉन्ट्रोवर्स कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, वो
0: अच्छा
1: छोटी थी दोनों,
0: हाँ,
1: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गया,
0: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते हुए
1: उन्होंने
0: देखा
1: गाते
0: सुना
1: देखा
0: है
1: तो उन्होंने
0: तो
1: वो
0: उनके
1: भी
0: अंदर वो
1: गाती
0: अपने
1: थी
0: आप,
1: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे
0: अरे
1: नहीं
0: वाह,
1: कि
0: क्या बात
1: क्यों
0: है,
1: आए हैं, ऐसे
0: क्या
1: नहीं। और
0: बात
1: हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं
0: है।
1: थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी
0: हाँ
1: ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे,
0: क्या
1: तो
0: बात
1: बड़ी
0: है,
1: बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं ये।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: वह
0: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
1: बहुत बड़ा
0: क्या बात। जी,
1: कॉम्प्लीमेंट।
0: अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा,
1: हाँ,
0: ऐसा
1: हम
0: कोई
1: लोग
0: गाना।
1: तीन डुएट भी गाते थे,
0: जी,
1: वो मन क्यों बहका रे बहका वो है,
0: ओह क्या
1: फिर
0: बात है,
1: कजरा मोहब्बत वाला वो है,
0: हाँ
1: फिर अन्ना
0: हाँ
1: जी का अपलम चपलम, वो उस पे डांस भी
0: क्या
1: होता
0: बात
1: था
0: है,
1: मेरे
0: क्या
1: शो में,
0: बात है,
1: ऐसे सब डुएट डुगाने हम लोग ने, तो
0: क्या बात।
1: वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंखो होती तो उड़ाती रे।
0: वाह,
1: हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो,
0: अच्छा
1: पंखो होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
0: अच्छा
1: में,
0: अच्छा अच्छा
1: बहुत लोगों को पसंद
0: तो क्यों
1: आता
0: नहीं
1: था।
0: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
1: अरे
0: को,
1: बाप रे।
0: हाँ? रामलाल जी का कंपोजिशन है।

अपनी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
9: कहिए,
10: सुनिए एक खुशखबरी,
9: कहिए ना,
10: आ गया है मौका।
11: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
12: अनजान ऐप से बचें।
13: RBI कहता है,
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राजकुमार गुप्ता और लेकर हाजिर हूं आपके अपने पत्रों को और उन पत्रों में जिनमें आपने लिखी है आपकी पसंद की फरमाइशें, आपकी पसंद के गीतों को, आपकी पसंद की फिल्मों के बारे में। तो हाँ, ये ढेर जो हमें लग रहा है और दिखाई दे रहा है कि इस ढेर में आपका प्यार, आपका दुलार आकाशवाणी झालावाड़ के साथ झलकता है और तभी तो आप हमें लिखते हैं पत्र और हम फरमाइश करते हैं आपकी पूरी। तो कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं, तो स्वीकार करें नमस्कार और आज के इन पत्रों के

तो ये पहला पत्र हमें मिला है ग्राम टेकली रटलाई जिला झालावाड़ से बालाजी रेडियो श्रोता संघ के पूजा सेन, भगवत बाई सेन, कृष्णा सेन, प्रिया सेन, कान्हा, मुकुट बिहारी सेन, देवकी नंदन, भैरूलाल, दिलीप, दुर्गेश, सुजान सिंह और इनके पूरे परिवारजन। आज आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनना चाह रहे हैं जो आपने इस पत्र में लिखा है। आप सुनना चाह रहे हैं आशिक फिल्म का ये गीत जिसे गा रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल। गीत रचना समीर की, ध्वनि संयोजन है संजय दर्शन का। साथ ही साथ फिल्म आशिक के इसी गीत को सुनना चाह है इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और उलाह अकरम नूरजहां। और ये एक और पत्र है राजनांद गांव से, आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। साथ ही साथ जेल रोड रायगढ़ से ये एक और पत्र है रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। तो आप सभी सुनना चाहते हैं आशिक फिल्म का ये गीत। गीत हम पहुंचा रहे हैं आप तक। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद।

ये अगला पत्र हम उठा रहे हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सुनना चाहते हैं दिल का रिश्ता फिल्म में अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण का गाया गीत। साथ ही इस गीत को लिखा है समीर ने और नदीम श्रवण का संगीत है। और हम आपकी फरमाइश को पूरा करने जा रहे हैं लेकिन ये पत्र एक और उठा रहे हैं। ये आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से पत्र लिखा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मैं राजहां। आप भी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल का रिश्ता का ये गीत। और एक और पत्र हम उठा रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी भी सुनना चाहते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू का गाया फिल्म दिल का रिश्ता का ये गीत। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद। गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये पत्र हम उठा रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सुनना चाहते हैं हमारा दिल आपके पास है, फिल्म का ये गीत जिसे गा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। गीत रचना जावेद अख्तर की है और संजीव दर्शन का संगीत। फिल्म हमारा दिल आपके पास है, इस फिल्म के इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं गांव बड़भूजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन, ओम प्रकाश। और ये एक और पत्र हम उठा रहे हैं जो हमें मिला है लाल माता चौक सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से। आप हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। तो आप सभी की फरमाइश हम कर रहे हैं पूरा। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आकाशवाणी झालावाड़ सुनते रहें, अपनी फरमाइश हमें लिखते रहें, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी फरमाइशों को।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला पत्र हम उठा रहे हैं। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। आप सुनना चाहते हैं बेवफा फिल्म का ये गीत, जिसे गा रहे हैं उदित नारायण। गीत रचना और ध्वनि संयोजन नदीम श्रवण का। साथ ही अगला पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क मध्य प्रदेश साजापुर से। आप हैं एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, शशिकांत, रिया, रीत, स्वीटी, सागर, रितिका, रिचा, चित्रंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत एवं इनका पूरा राजावत परिवार। तो आप भी सुनना चाहते हैं बेवफा फिल्म का ये गीत, और गीत हम पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट तक।

अगला पत्र हम उठा रहे हैं और अगला पत्र हमें मिला है दिनेश कुमार, रागिनी, मुस्कान और आप ये पत्र हमें लिख रही हैं बरेली केंट चनेहटी बरेली सी। और आज आप हमारे कार्यक्रम में सुनना चाहती हैं फिल्म चलो इश्क लड़ाएं का ये गीत, जिसे गा रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक। समीर की गीत रचना है, हिमेश रेशमिया का संगीत है और एक और पत्र हम उठा रहे हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से। बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, आप सभी भी सुनना चाहते हैं चलो इश्क लड़ाएं फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र हम उठा रहे हैं। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन से आप हैं। विनोद मुणत, कुमारी नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, और आप सुनना चाहते हैं ऐतराज फिल्म का एक गीत जिसे गा रहे हैं के और अलीशा। गीत रचना हिमेश रेशमिया की है और संगीत भी हिमेश रेशमिया का ही है। और इसी गीत को सुनना चाहे गांव गुरवाड़िया भरता, तहसील पचपाड़, जिला झालावाड़ से राजू मेहर, ललित मेहर, दिव्या मेहर, सुशीला मेहर, राधाबाई मेहर। और साथ ही साथ एक और पत्र हम उठा रहे हैं सर्वानिया महाराज, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार, यशस्वी पाटीदार और हिमांशी पाटीदार। आप भी सुनना चाहते हैं ऐतराज फिल्म का यही गीत, तो हम आप सभी श्रोता मित्रों की फरमाइश को कर रहे हैं पूरा और गीत पहुंचा रहे हैं आप तक। इसी प्रकार से आकाशवाणी झालावाड़ सुनते रहें, अपनी फरमाइश को पूरा करने के लिए पत्र लिखते रहें और पत्र हम तक आते ही हम करेंगे आपकी फरमाइश को पूरा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला पत्र हम उठा रहे हैं और ये पत्र हमें मिला है मालवा रेडियो श्रोता संघ की प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, साथ ही साथ आप हैं सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और साथियों का गाया इश्क विश्क फिल्म का ये गीत जिसे गा रहे हैं अलका याग्निक। और ये अगला पत्र हम उठा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म के लिए ही, ये फरमाइश है शीतला माता चौक माताजी की मिसरौली तहसील पचपाड़ जिला झालावाड़ से। आप हैं बाबूलाल, विनोद गुप्ता, ईश्वर पाटीदार, सुनील गुप्ता, राहुल गुप्ता, रामगोपाल गुप्ता और होकम सिंह, साथ ही साथ आप हैं कैलाश सिंह पंवार और इनके सभी साथी। ये एक और पत्र हमें मिला है जो ग्राम गिरधरपुरा हेमड़ा पाटन से हैं, पप्पू परिहार, बलराम परिहार, भगवान सिंह, करण अर्जुन गुल।

सन सृष्टि, कालीबाई, सौरभ और संतोष दांगी। आप भी सुनना चाहते हैं फिल्म इश्क विश्व का ये गीत, तो गीत पहुंचा रहे हैं आप तक। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला पत्र हम उठा रहे हैं बुंदेलखंड रेडियो श्रोता संघ रामटूरिया पोस्ट रामटूरिया तहसील घुवारा जिला छतरपुर और आप हैं बहादुर चक्रवर्ती नंदकिशोर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती और साथ ही साथ परी रानी और राधा देवी के साथ इनका पूरा परिवार। आप सुनना चाहते हैं संगीत फिल्म का ये गीत जिसे गा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल। गीत रचना संतोष आनंद की है और ध्वनि संयोजन भी आनंद मिलिंद का है। फिल्म संगीत के इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ततरेंगी से भागवत वर्मा लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। और एक और पत्र हम उठा रहे हैं भटिंडा रोड डबोवाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग और मोहित नारंग। आप भी सुनना चाहते हैं संगीत फिल्म का यही गीत और ये ग्राम बाघेर जिला झालावाड़ से लालचंद कालू महेश छीतर बलवंत रमेश और इनके सभी साथी। आप भी सुनना चाहते हैं संगीत फिल्म का यही गीत तो ये आप सभी श्रोता मित्रों की फरमाइश को हम कर रहे हैं पूरा और गीत पहुंचा रहे हैं आप तक। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे अन्य श्रोता भी सुनना चाहते हैं अपनी फरमाइश का कोई गीत तो पत्र हमें लिखें हम आपको पता इस गीत के बाद बताएंगे।

तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई गीत तो पता लिख लीजिए। हमें पता आपको बता रहे हैं कि इस पते पर पत्र लिखना है। लिखिए आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झालावाड़, और पिन कोड संख्या है 326001। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम आज का कार्यक्रम यहीं करते हैं समाप्त। तो दीजिए आज्ञा आपकी रेडियो दोस्त राजकुमार गुप्ता को आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त करने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में, साथ ही कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के प्रसारण समय के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 से और रात 8:15 पर। शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। शाम 7:00 किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी गोबर गैस संयंत्र एवं इसके लाभ। भेंटवार्ता में सुनेंगे प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। कन्हैयालाल कृषक ग्राम सादला से बीनू शर्मा की बातचीत, साथ ही जानकारी की बातें होंगी किसान सम्मान निधि के बारे में और अन्य जानकारियां कार्यक्रम में। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:30 से, जिसे

रिले करेंगे मुंबई केंद्र से। और रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गैर फिल्मी गीत गजल भजनों का कार्यक्रम सबरस का प्रसारण होगा रात 9 बजे से। ये थी हमारी आज की शेष रही कार्यक्रम उनके प्रसारण की रूपरेखा। आइए जानते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण। कल प्रातः 7 बजे सुनी का कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़, सुविचार होगा लाखों लोगों की दुआएं उसके साथ रहती है जो मानवता के नाते अपना हर फर्ज निभाता है। चर्चा होगी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में और अन्य जानकारियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। कल प्रातः 8:30 पर फुलवारी कार्यक्रम में आओ जाने सड़क पर नन्हे कदम सुरक्षा के संग संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मदर्स डे बच्चों के मुख से क्विज बताओ तू जाने सड़क सुरक्षा पहचाने अनन्या वन्या प्रियल वैदिक सारांश रक्षिता तन्वी से मेघना वैष्णव की बातचीत होगी। साथ ही सीख नियम मानेंगे सुरक्षित रहेंगे। कल शाम 5 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम रहेगा हेलो आकाशवाणी। कल शाम 7 बजे किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। चर्चा होगी फसल विविधीकरण एवं इसके लाभ। भेंटवार्ता में सुनिए हरे चारे का विकल्प नेपियर घास। रवि यादव कृषि वानिकी अनुसंधान अध्येता उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से मुकुट बिहारी मीणा की बातचीत। जानकारी की बातें होंगी मेक इन इंडिया, साथ ही अन्य जानकारियां कार्यक्रम में शामिल होंगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ

0: ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सत्यमेव जयते फिल्म में सुनिए बप्पी लहरी का गायकी। संगीत भी बप्पी लहरी का है और गीत है फारूक कैसर का।

मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल को सुनिए फिल्म नगीना में। आनंद बख्शी की गीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म सुनिए बप्पी लहरी के साथ आशा भोसले को। शब्द रचना इंदिवर की है, ध्वनि संयोजन बप्पी लहरी का।

वारिस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी और फिर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है, उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास एमएससीटी के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया।

0: था कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
1: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसए राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
2: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौर ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के प्रकरण में

0: राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही यूटीबी पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दो अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी

0: सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 383,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की यह प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में

0: आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची, मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो, नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ले जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाईयों पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में घनखट होना तेज गर्मी रो असर, आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरों आज देश भर माय साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माय राजीनामा लायक मामला नी सुनवाई करी जावे है। वे कहो कि इनो अदालतां रो टेम बचबा सागे, पक्षकारां ने तुरंत न्याय मिले है।
2: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है, उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास एमएसीटी के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
1: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी चिया।
3: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसएज राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नवी न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिरावणो है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रे बारा में विगतवार चर्चा करी जी, अरवान लागूकरण में आ रही परेशानियां रे बारा में विचार करी जियो।
4: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
1: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेली लोक अभियोजकां री समस्यावां सुनी अरवारा निपटारा रे बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन नु जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकों लागू करण रे बारा में खास तकनीकी सत्र राखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम लेवण माथे जोर दीनो है। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा माथे राखी चिया 2 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवनो जरूरी है, पर तकनीक काम लेवन रे दौरान मानव मूल्यां ने नजरअंदाज नी करया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नी भेवनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चिया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद न्याय

0: 31.4 और जोधपुर में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
0: जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियां रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिलावण रा जतन करण रा हुक्म दिना है। वे आज जयपुर में शहर री कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथे काबू करण रे बारा में राखी जी मीटिंग में बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर खासतौर महिलावां और बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराधा और अनुसूचित जाति जनजाति जुड़िया मामला में तुरंत जांच कर और असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दिनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओर आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांति सागर पूरी फेगी। राज्य 38 जिला माए फे परीक्षा माए 76.43% उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड़ रहा तहत आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स बीच मैच फैला। वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची, मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पतालों में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाईयों पालना करण रा हुक्म दीना। और प्रदेश में घनखट होना तेज गर्मी रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार,
2: हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7 बज चुके हैं, अब किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सभी किसान साथियों के तहे आपका साथी प्रताप
3: और आपकी बीनू बेन को
2: घनो घनो राम राम, राम, राम। और भाई साथियों, देखो आपना नी कार्यक्रम में आज अपन चर्चा में सुनांगा गोबर गैस संयंत्र और उसके लाभ। तो देखो बिनु भाई, गोबर गैस का ही हो चे और कशा अपन इनको लाभ ले सकन छे।
3: बहुत ही बढ़िया बात की, गांव का क्षेत्र में गोबर तो घर में हो ही छे, पशु सब किसान बहन भाई पाले ही छे, तो गोबर गैस को संयंत्र लगाकर वह ऊर्जा प्राप्त कर सके छे। और ई तकनीक का माध्यम से बहुत ही ज्यादा फायदा छे, जो जैविक कचरो हो छे ना उन्हें सड़ाकर मीथेन युक्त बायोगैस और उच्च गुणवत्ता वाली खाद को उत्पादन कर सके छे किसान भाई बहन।
2: बिनू बहन देखो, गांव का जो अपना साथी है वहाँ के गोबर निकले और वो गोबर के तही वे रेवड़ी में ही फेंक देवे, उनके तही इकट्ठो करके एक निर्धारित मात्रा में बना करके होज और उसे गैस बना के और गैस सु आपनो चूल्हा ईंधन का रूप में काम में आवे वे ले सके। उसे वहाँ कहते हैं यो फायदो है कि गोबर भी काम में आ जावे, यानी उनकी खाद भी बन जावे और उसे जो बनवा वाली गैस है वहाँ के रसोई में काम आ जावे और दूसरी जगह ईंधन का रूप में काम आ सके।
3: यानी आपको खेबा को मतलब यो छ कि यो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत छ जो खाना बनावा में भी काम में आओ छ और रोशनी के लिए भी अच्छो छ, ईंधन भी प्राप्त हो छ।
2: हाँ देखो बिनु बहन, अवार तो वैसे ही गैस की मारामारी भी चल रही है, तो कितनो बढ़िया फायदो है अगर गोबर भी अपनो काम में आ जावे और गैस भी बन जावे और उनमें अपनो अतिरिक्त कहीं भी नहीं लागे।
3: और जो अपशिष्ट पदार्थ छ उनको भी बढ़िया विकल्प छ।
2: गोबर ही तो अपशिष्ट, जैसा गोबर सु अपन बनावा तो गोबर एक प्रत्येक जो है किसान जो अपना गांव में रहवे छे भाई, तो वहाँ किसान आन के कहीं कि गोबर रोजी निकले, तो जो गोबर है उनकी जो निर्धारित मात्रा है उन हिसाब से अगर वह जैसा मान लो कोई के एक पशु है, कोई के दो पशु है, कोई के तीन भी चार भी है, उन हिसाब से उनके कितने गोबर जो है रोज निकल जावे उन हिसाब से वो संयंत्र लगा सके और गैस बना के और वो चूल्हा का रूप में यानी कि ईंधन का रूप में वो काम में ले सके।
3: और देखो इसु घना ही फायदा छ, देखो
2: तो
3: पैसा भी न लगा, मुफ्त में ही गैस मिल जाओ छ और लकड़ी की भी जरूरत न पड़े और जैसा की आपने की सिलेंडर की भी जरूरत न पड़े।
2: हाँ,
3: फायदा को
2: और देखो भाई, इशू अपन जैसा कोई के लाइट नहीं है या लाइट चल गई है तो उजालो भी अपन इशू कर सका।
3: और इका साथ ही साथ इशू जैविक खाद भी बना जाए, क्योंकि गैस बनवा के बाद जो बची हुई गाड़ी खाद रहे हो स्लरी जी ने की हो जाए उमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाए और यह फसला के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद भी जाए।
2: हाँ यह तो बहुत ही बढ़िया बात बताई बिनु बहन आपने की इशू अगर यह जो खाद है ना ईगत अगर अपना खेतान में उपयोग करे अपना किसान साथी तो इशू विपरीत प्रभाव भी कहीं न पड़े, क्योंकि जैविक का रूप में यह काम में आवे और इनमें कहीं भी जो है उर्वरक है ना वो उर्वरक नहीं है, ताकि कहीं विपरीत प्रभाव न तो मानव को स्वास्थ्य पे पड़े और न ही आपने खेती के में पड़े, यानी खेत भी खराब न हो, मिट्टी को भी स्वास्थ्य खराब नहीं हो और आपना भी स्वास्थ्य खराब नहीं हो और जैविक रूप में यह काम आवे और अच्छो सड़े हुए खाद अपने मिल सके जिसकी तलाश अपने हमेशा रहे।
3: और इसका साथ ही साथ देखो मैं धुआं भी न हो, यानी धुआं रहित ऊर्जा प्रदान करे छ गोबर गैस संयंत्र, तो इसु प्रदूषण भी न हो और पेड़ा की कटाई भी कम हो रही छ, तो छ ना ये तो बहुत ही बढ़िया काम।
2: पेड़ की कटाई तो कम होगी ना जब अपनी गैस मिल जाएगी खाना बनावा के लिए, तो वैसे ही जंगल में जो लकड़ियां अपना बहुत सारा जो साथी है जो कि जानकारी ना रखाना है पेड़ काट डाले और वहाँ ही लकड़ी का रूप में जो है सूखे के बाद लकड़ी का रूप में काम में ले ले, तो भाई देखो जंगल भी बच गया, गैस भी अपने काम में आई ईंधन का रूप में और खाद भी बन गयो।
3: साथ ही साथ घर सू और जो कचरो खड़ा छे और पशुओं से जो निकल वालो अपशिष्ट छे ई कचरा का माध्यम सू बहुत बढ़िया उपयोग हो रहे छे, अच्छी चीज बन रही छे और मक्खी मच्छर भी कम हो रहा छे इसू और स्वच्छता भी बनी हुई छे वातावरण में।
2: हाँ देखो स्वच्छता तो है ही सही, तो यानी कि आम को आम गुटली को दाम, यानी कहीं भी अपनो अतिरिक्त में न लाग रही हो और अपनो गोबर भी काम आ रही हो, गैस भी मिल रही और साथ ही साथ अगर उजालो करना तो वो भी हो रही हो और बहुत बढ़िया खाद भी मिल रही हो। तो देखो भाई इनमें कितना फायदा है इन्हीं गोबर गैस संयंत्र का, इन्हीं अपना साथी अवश्य लगाना चाहे, जानकारी नहीं होवे तो जानकार सू अपना साथी सू या विभाग में जाके इनके बारे में जानकारी कर लेनी चाहे और वहाँ का निर्देशानुसार ही अपनी इस संयंत्र को स्थापना करनी चाहे, ताकि आपने भी लाभ रहे और आपन अटिवटी मारिया मारिया न परा अच्छो आपनो लाभ होवे, सारी चीजा को उपयोग हो जा और बहुत बढ़िया फायदो।
3: वास्तव में गोबर गैस संयंत्र अवार इस समय एक बहुत ही अच्छो ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा को स्रोत छे, तो

0: इको उपयोग अपना किसान भाई बहन अवश्य करेगा, तो उम्मीद करा चाहूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिन बिन, तो बहुत ही बढ़िया बातचीत आपने हुई गोबर गैस के बारे में। और देखो भाई, अब आपने एक ऐसा प्रगतिशील किसान सु वहाँ की कहानी वहाँ की जुबानी सुनागा, कशा वाने ऐसी प्रगति करी कि जो वह अच्छा विकसित प्रगतिशील किसान बन गया। वहाँ सु अपना किसान प्रेरित होगा कि याने जिसा लाभ कमा के और अच्छी खेती करके और यह सफल होया अच्छा आपन हुआ। तो सुना इन्हीं बारे में बहुत ही बढ़िया अपना किसान साथी से हुई बातचीत।
2: राम राम सर,
3: राम राम सर,
2: आपको परिचय।

0: ही पढ़ाई करी है।
1: तो आपको खेती बाड़ी की और कशा रुझान हो?
0: खेती बाड़ी की और ये कि जब 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे वो पीरियड में घर का थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो आगे पढ़ा नहीं पाए और उसकी वजह से फिर खेती में काम करना पड़ा और कुछ टाइम के लिए बाहर मजदूरी करने गए। फिर पापा की तबीयत खराब हुई, फिर पापा शांत हो गए, तो इसलिए फिर खेती बाड़ी में आना पड़ा। और जो पापा जो करते थे उसमें और फिर नई नई जो चीजें सीख के और इसमें तकनीकी के आधार पे करना चालू करा।
1: तो मतलब आपको खेवा को योचक, अगर मैं नई तकनीक का माध्यम सू नवाचार का तरीका सू खेती करा चाह तो फायदो छ?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अबार इस खेती बाड़ी में काय काय उगा रखे छो आपने?
0: हाँ, अभी गन्ना लगा रखा है और ये मूंग बो रखे है और खरबूजे तरबूज है और वेजिटेबल्स में भिंडी और बैंगन टमाटर ये लगा रखे हैं।
1: तो इको तो अतिरिक्त फायदा हो तो होगो आपने?
0: जी हाँ।
1: तो मतलब अगर आपना और किसान भाई बहन इस तरीका सु बाड़ी लगावे छ या कोई और फसल लेवे छ तो उसको साप्ताहिक मुनाफा हो सके?
0: बिल्कुल, साप्ताहिक ही मतलब सब्जियां चली जाती है। वैसे तो ये डेली परपेज है, डेली का ही मतलब आप तो बेचते हैं तो डेली इनकम होती है।
1: हाँ, तो मतलब किसान भाई बहन खेती किसानी के साथ साथ जो मूल फसल ले रहा है उसका साथ साथ अतिरिक्त जैसे सब्जी बाड़ी लगा सके छे, बागवानी को काम कर सके छे, फूलों को काम कर सके छे और अतिरिक्त आय ले सके।
0: जी
1: एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, आप ले ही रहा अतिरिक्त आय तो स्वास्थ्य ही सर्वोपरि छे और मानव स्वास्थ्य में देखता हुआ जैविक खेती आज की परम आवश्यकता छे, तो आप इस विषय पर काय विचार छे और आप भी खेती बाड़ी कर रहे छो जैविक खेती का माध्यम से काय खेबो चाहूंगा?
0: हाँ मैम, जैविक खेती तो बहुत ही जरूरी हो गई है मैम, क्योंकि जो रासायनिक पद्धति से जो खेती कर रहे थे उसका एक लास्ट स्टेज आ गया है, क्योंकि जो रासायनिक खेती कर रहे थे ना उससे जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो गई है। पहले उसको अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग डालते थे लेकिन अब उसका एक लास्ट सीमा है, यहाँ से अब बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये अभी हमने देखा है जैविक खेती में हम सारा प्राकृतिक चीजों से आदान मना के है और जब खेतों में डाल रहे हैं तो उससे काफी इजाफा हो रहा है। मार्केट में जो बाकी जो रासायनिक लाके जो किसान खेती कर रहे हैं उनके 8 क्विंटल 7 क्विंटल 6 क्विंटल इस तरह से गेहूँ निकल पा रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें 12 क्विंटल तक भी मतलब इजाफा देखने को मिला है। मैम, जैविक खेती का तो ये स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और किसान को अच्छा मुनाफा होता है मैम, क्योंकि लागत इसके अंदर बहुत कम होती है।
1: हाँ, मतलब लागत कम और
0: मुनाफा ज्यादा
1: और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी।
0: जी जी।
1: तो आपने जैविक खेती में जैसा खाद वगैरह भी बनाई होगी, वर्मी कम्पोस्ट वगैरह, इसमें आप काय काय काम करो छो?
0: हाँ, इसमें मैम अभी हम वर्मी कम्पोस्ट जो खाद तैयार करी है इसमें मोरिंगा के पेड़ लगाए हुए हैं जो सेजन है, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां उसमें ऐड करके और जैसे एक लेयर पत्तियों का बिछा दिया ताकि केंचुओं को ऑक्सीजन मिल सके और फिर गोबर का लेयर बिछा दिया, इस तरह से हम बेड तैयार करते हैं और केंचुए छोड़ देते हैं और उससे जो खाद तैयार होती है तो उसमें काफी पोषक तत्वों को इजाफा देखने को मिला है, उनकी मात्रा देखने को मिली है और वो जब बनके तैयार हो जाता है उसके बाद मैम हम उनमें ट्राइकोडर्मा और राग फॉस्फेट ये मिला के और उसको जूट का बोरी से ढक के रखते हैं, उसके बाद फिर प्लास्टिक की पन्नी में और फिर कट्टे में पैक करके और ऐसे 50-50 किलो के बना के और डाल देते हैं मैम, तो वो एक तरह से बहुत काम का खाद है, उससे फसलों के अंदर काफी बढ़वार देखने को मिला है। उसके साथ ही हम रैपिड कंपोस्ट रेवड़ी का जो खाद है उसको भी हम तैयार करते हैं, उसमें ये है कि जैसे गुड़ बेसन छाछ जीवाणु है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वो 30 दिन के अंदर ही कम्प्लीट बनकर तैयार हो जाता है। उसके साथ ही हम एक सीवांश खाद तैयार करते हैं जो 18 दिन में तैयार हो जाता है और इसके साथ साथ हम जैसे 5 पत्ती का काढ़ा, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र और जीवामृत ये लिक्विड फॉर्म में भी हम बनाते हैं, पंचगव्य सस्यगव्य इन्हीं से पूरा खेती करते हैं। एक बायोगैस प्लांट भी लगाया हुआ है तो बायोगैस की जो सैलरी है वो भी खेत में डालते हैं, इससे काफी इजाफा मिला है।
1: सर, आपने जैसा आपको खेत अच्छा उत्पादन देवा अच्छी फसल पैदा हुआ इसके लिए काई मिट्टी की जांच वगैरह भी कराई थी आप?
0: हाँ मैम, ये मैं 2014 से मैं खुद ही मतलब मिट्टी की जांच करता हूँ और मैंने

0: में भी टेस्ट करवाया, केवीके में भी टेस्ट करवाया था, तो सेम रिजल्ट रहा है। और जो मिट्टी की जो जांच है उससे सारे पोषक तत्वों का पता चल जाता है मैम, क्योंकि जो जमीन के अंदर जो अनबैलेंस पोषक तत्व हो गए हैं उनका सिर्फ मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलता है। अपने शरीर में जैसे ब्लड होता है, इसके जमीन के अंदर जो कार्बन है और उस कार्बन की मात्रा बहुत कम होती जा रही है, तो मिट्टी की जांच करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि आपके जमीन में कार्बन की क्या स्थिति है, क्योंकि बैलेंस के लिए कार्बन बहुत जरूरी है। और सबसे एक ये है मैम कि जो सूक्ष्म जीव थे वो सूक्ष्म जीव जमीन के अंदर नष्ट हो गए, क्योंकि सब लोग रासायन डाल के कोई इल्ली मारने के लिए डाल रहा है, कोई कच्चा मारने के लिए डाल रहा है, वो इल्ली मारने के लिए कच्चा मारने के लिए डाल रहा है, लेकिन किसानों को ये पता नहीं है कि उनकी वजह से वो इल्ली मर जाती है, कचरा मर जाता है, लेकिन जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन बनाने का काम करते हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं, और उसी की वजह से जमीन कठोर होती जा रही है, और ये जमीन कठोर होने की वजह से उत्पादन में इजाफा नहीं हो पाता है। तो वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो ही भोजन बना के और पौधे को भोजन प्रोवाइड कराते हैं, तो मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, मिट्टी की जांच से पोषक तत्वों का बैलेंस का पता चल जाता है।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि मिट्टी की जांच अति आवश्यक है और उसका आधार पर किसान भाई बिना ने फसल लेनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए।
0: जी मैम।
1: अब आपने बात करा मोटा अनाज की, आपने मिलेट का रूप में मोटा अनाज जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहो चाहे ये भी उगाओ जो आप, तो इका बारे में आपको काय विचार से ताकि अपना किसान भाई बहन भी इको फायदा ले सके, मोटा अनाज को महत्व पहचान।
0: हाँ, इसमें जो मिलेट्स हैं जैसे मैम इसमें कोदो, रागी, कुटकी, बाजरा, ये जो अनाज है मैम, तो इसमें अभी हम 2022 से ही लगा रहे हैं, तो काफी भोजन में न्यूट्रिशन का काफी देखने को मिला है, क्योंकि ये जो जनरल अनाज है जो 3 महीने का जो अनाज है ये अनाज के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, और जो ये मिलेट्स अनाज है ये 6 महीने में तैयार होता है, इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इनसे कई गुना अच्छा है। जैसे अभी गेहूं, चावल ये नेगेटिव अनाज है, और बाजरा, ज्वार, मक्का ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और जैसे बाजरा है और कोदो है, कुटकी है, रागी है, ये एक पॉजिटिव अनाज है, तो ये मिलेट्स पे सब किसान भाइयों ने ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपन रोज जो भोजन कर रहे हैं उसके अंदर वो न्यूट्रिशन मिल सके। और वो न्यूट्रिशन आज की जो तारीख है जो जितना शरीर के लिए आवश्यकता है उतना पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जो आज का भोजन है, तो मिलेट्स पे आना चाहिए।
1: मोटा अनाज आय का स्रोत भी है, इसमें इनकम भी होगी आपने।
0: जी जी मैम, ये आय का स्रोत भी है, बहुत सारा जगह बेचते हैं, अभी हमने दिल्ली में भेजा है और साउथ में भी हमने भेजा था, किनोवा वगैरह, किनोवा भी लगाते हैं, दिल्ली में तो हम ज्यादातर देते रहते हैं, और जयपुर में जो दो साथी हैं जो NHDC कमांडो रेगे है, रिटायरमेंट है, तो दोनों मित्रों ने मिलके और ये एक होटल चलाया है, तो वो लोग यहाँ पे हमारे फील्ड पे विजिट करने आए थे, तो यहाँ से हम उनको जो ऑर्गेनिक की जो चीजें हैं वो सारी प्रोवाइड कराते हैं, जो जो हम दे पाते हैं, तो उससे हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है, यहीं से रख दो सुबह में जयपुर पहुंच जाता है।
1: बहुत ही बढ़िया, आप मोटा अनाज उगाया और अपने किसान भाई बहनों को भी प्रेरणा दे रहे थे आप। तो एक चीज, आप चाय की खेती भी कर रहे थे जो कि बहुत ही लाभदायक है, तो यो नवाचार करवा की प्रेरणा आपका ताई कहाँ से मिली, आपने कहीं कहीं प्रशिक्षण लियो ताकि एक सफल किसान बन पाया?
0: हाँ मैम, ये जैसे कृषि विभाग से 2011 में केवीके में हमने ट्रेनिंग करी थी, और उसके बाद जैसे हुकम जी, पाटीदार जी और MS आचार्य जी और कृषि विभाग केवीके, इन सब लोगों के ट्रेनिंगों से इनसे सीखने को मिला, और जो चाय का जो है, चाय जो MS आचार्य सर है तो उनसे बीज ले गया था मैं, और उसको मैं 2024 से ही उगा रहा हूँ, और उसके 4 बार उनके फूलों की कटिंग हो जाती है, और चाय वो जिसे जो आम चाय पीते हैं उस तरह का चाय नहीं है, वो चाय शाम के टाइम पे सोते वक्त पीने का चाय है, उसमें जैसे 4-5 फूल ले ले, 4-5 फूल गर्म पानी में उबाल लेते हैं जिसे चाय बनाते हैं, और उबालने के बाद में उसे छान लेते हैं, और छानने के बाद में उसको देसी शहद मिला के और उसको शाम को सोने से 10 मिनट पहले उसे बनाते हैं, पीते हैं और फिर सो जाते हैं। तो इसमें ये जो फायदा है कि जैसे किसी को

0: निंद्रा है उसको अच्छी नींद आती है, जनरल आदमी भी ले सकता है उसे, और माइग्रेन है किसी को, मतलब दिमाग से रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके लिए काम करता है, रक्तचाप के लिए काम करता है, स्किन के लिए काम करता है, तो वो एक तरह से शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चाहिए मैम।
1: कि आपने जैविक खेती भी करी और नवाचार का रूप में आप नरा काम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं पशुओं की भागीदारी भी है?
0: जी मैम,
1: पशुओं अगर अपना किसान भाई बहन रखा है तो वन जैविक खेती में और अन्य खेती किसानी में काई काई लाभ हो सकता
0: है? उम्मीद ये है मैम कि जैसे अभी जैविक खेती अगर करनी है तो पशु तो बहुत जरूरी है, बिना पशु के जैविक खेती तो नहीं होती है मैम। तो अभी हमारे 4 पशु है और उनका जो गोबर निकलता है उससे जैसे बायोगैस में बायोगैस बनता है, तो वो गैस हमारे घर में काम आ जाता है। आज सिलेंडर को देखो तो कितना महंगाई चरम सीमा पे जा रहा है और हमने कभी भी उस गैस को नहीं खरीदा है, हम सिर्फ ये बायोगैस जो है इसी से पूरा खाना बनाते हैं, पूरा काम इसी पे करते हैं, और इससे जो सैलरी निकलती है वो सैलरी इतना काम करती है मैम कि कहीं पे भी कोई भी बीज अगर आप डाल दो तो तुरंत अंकुरित हो जाता है, तो उसका जो लिक्विड फॉर्म में और या वो जो सैलरी है उसको हम पूरा जैविक खेती में काम में लेते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि सब लोग जैविक खेती प्राकृतिक खेती करें।
1: कन्हैयालाल जी आपने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण और सार्वजनिक जानकारी आज मका किसान बहन भाई कताई दी, आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप कताई बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।
0: राम राम सर।
2: देखो वे किसान साथियों बहुत ही बढ़िया जानकारी बार अपनी जो है कन्हैयालाल जी ग्राम सदला का यहाँ सु मिली, यहाँ ने जा सफलता प्राप्त करी, अगर अशे ही अपना साथी सफलता प्राप्त करे तो बहुत ही बढ़िया है, अशु न हो के आपन खेती की ओर कम रुझान रखाना, तो भाई साथियों खेती को बहुत ही बढ़िया काम है, कोई की अपनी नौकरी नहीं करनी पड़े, अपनी कोई की हाथा जोड़ी नहीं करनी पड़े, अपनों काम अपन ही करना है और अपन ही सफलता प्राप्त करके ऊंचाइयां छूनी है, तो बहुत ही बढ़िया बातचीत अब आपने सुनी। और अब बारी आ गई भाई देखो बिनु बहन देखो लोक संगीत की, तो सुन ला बहुत ही बढ़िया यो लोकगीत जगन्नाथ गोचर और वहाँ का सात्यांशु।

0: और देखो बहुत ही बढ़िया लोकगीत अबार आपन ने सुन लियो, जरूर आप भी पसंद आए होगा और अपना साथियाणी भी पसंद आए होगा।
1: हाँ बिल्कुल। और अब आपन आज की जानकारी की बात
0: हाँ
1: करना।
0: बिल्कुल, यह भी जरूरी है। तो सुना आज की जानकारी, भिन्न भिन्न कई की जानकारी दे रहे हो आज आप।
1: आज किसान सम्मान निधि योजना की आपन बात करेंगा।
0: अच्छा
1: यह योजना केंद्र सरकार की योजना छे और
0: हाँ
1: इमत किसाना ने प्रति वर्ष 6,000 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जावे छे और इमत 2,000 रुपया की 3 किस्ता मिले छे किसान ने साल भर के
0: अरे
1: अंदर।
0: भाई बिनु बहन, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहे हो कि यीशु अपना जो साथी है, किसान साथी, वहीं कहीं भी निकलना पड़े, सीधी वहाँ का बैंक का खाता में 2,000 रुपया 3 बार साल में लगे एक वित्तीय वर्ष में, जो या तो बहुत ही बढ़िया फायदा की बात है। और यहीं की जानकारी अपना सब किसान साथियों होनी चाहिए, सीमांत किसान होनी चाहिए, बड़ो किसान नहीं होनी चाहिए, छोटो किसान हुए उनका तय यो फायदा मिले। हाँ
1: और वहाँ को जो आधार छ वो लिंक होनी चाहिए जो बैंक खाता से,
0: यह तो
1: ताकि
0: सही बात
1: डायरेक्ट
0: है।
1: वहाँ का जो पैसा छ किस्त का वो खाता में आ जावा।
0: देखो भाई बिनु बहन, अब तो आधार में अपना फोन नंबर और खाता नंबर और सारी जानकारी अपनी लिंक हो वो जरूरी है। जब भी जा रहा अपन DBT योजना के अंतर्गत किसी भी तरह को लाभ सरकार से ले सका, और अगर ये नहीं है अपना आधार में तो अपन उन लाभ से वंचित हो सका। इसलिए साथियों कहते हैं जो भी सीमांत और लघु किसान है वह कहते हैं अपना बैंक खाता के तई आधार से लिंक कराना चाहे, और अपनी जमाबंदी तो है ही सही वहाँ पे, है ना, जमाबंदी गिरदावरी है ही सही, तो उनके अनुसार वह किस्त डल जावे। अगर कोई साथी के जैसे जमाबंदी में या बैंक खाता में या मोबाइल नंबर में कोई भिन्नता है तो वो कहता है एक समान करा लेनी चाहे, ताकि वहाँ का पैसा रुके नहीं, तुरंत डल जाए।
1: हाँ, और क्योंकि ये योजना को उद्देश्य यही छ किसाना की आय बढ़ाबो, वहाँ का खेती बाड़ी का जो खर्चा छ वहाँ में सहायता करबो सरकार द्वारा। सरकार किसान भाइयों की जो गतिविधियाँ छ कृषि संबंधी, खेती किसानों से संबंधित वो काम जो कर रहा छ, वहाँ की जो घरेलू जरूरत आ छ जैसे कि खाद बीज अन्य सामान व खेती बाड़ी कारण खरीदे छ, तो वहाँ एक बहुत ही बढ़िया सहायता ई राशि का माध्यम से मिल रही।

0: देखो यीशु कहिए कि वहाँ जो किसान जो गरीब किसान है वहाँ कहते खाद बीज के लिए एक लाभ मिल जावे और यीशु वह जो जो जरूरी चीज़ है वह खरीद सके और अपनी खेती में अच्छा उत्पादन कर सके। बहुत बढ़िया योजना है, तो इनको लाभ तो वे ले ही रहा है।
1: और किसान भाई बहनों ने पीएम किसान पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप का माध्यम से इनको पंजीकरण अवश्य करानी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, यह तो बात है कि अगर इनको पंजीकरण नहीं है तो फिर वही लाभ नहीं मिले, तो पंजीकरण तो अवश्य करानी चाहिए। और बिनु बहन, अब इनके साथ ही लग रहे है कि अपना कार्यक्रम को टाइम भी पूरा हो वालो है, तो देखो भाई अब अपना साथियों से इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि घड़ी को इशारो हो चुको है। तो किसान वाणी कार्यक्रम सुन बोला सभी किसान साथियों सु ला इजाजत, तो आपका साथी प्रताप के ताई
1: और आपकी बिनु बहन का ताई दो आज्ञा
0: राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अभी आप सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम में।

फौजी भाइयों, उदास भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं और मेरे छोटे भाई हैं पंकज उदास। एक गाना उन्होंने गाया, ऐसा दिल से गाया कि आदमी जब सुनता है तो रो पड़ता है, और ख़ास तौर से जब अपने देश से दूर, अपने गांव से, अपने वतन से दूर होता है, तब उसको लगता है कि मैं कब पहुंच जाऊं, कब अपने घर जाऊं।

0: जाके अपने परिवार वालों से मिलूं। ये गाना सुनने के बाद हर इंसान सोचता है कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊं और अपने परिवार वालों से मिलूं। जब हम भी ये गाना सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। मुझे आशा है आपको ये गाना ज़रूर पसंद आएगा, अपने परिवार की याद दिलाएगा। मेरे छोटे भाई पंकज, जो मुझे जान से प्यारे हैं, उनका गाया हुआ ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत फिल्म नाम के लिए, जिसमें उन्होंने खुद फिल्म में एक्टिंग भी की थी। गीत है चिट्ठी आई है।
1: चिट्ठी

फौजी भाइयों को खुश करें क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं, मगर ये शायद दूर की बात है। इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मज़ा आया हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मगर जाते जाते आपको फिर सलाम करता हूँ और आपको ये फिर से कहता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं उसका हमें अंदाज़ा है, हम महसूस करते हैं जो काम आप कर रहे हैं, हम हमेशा आपके ऋणी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी

0: फौजी भाइयों, जाते जाते मनहर उदास का सलाम, सिर्फ सलाम नहीं, जय हिंद।
1: फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म जगत के जाने माने

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आपके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन भी मायने रखते हैं। अब सवाल यह है कि प्रवासी पक्षी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? हर साल भारत में पैसेज माइग्रेंट्स यानी कि रास्ते में रुकने वाले प्रवासी पक्षी आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। ये पक्षी ना तो गर्मियों में आते हैं और ना ही सर्दियों में, बल्कि मध्य और पूर्वी एशिया में अपने प्रजनन स्थलों से अफ्रीका में अपने शीतकालीन स्थलों की ओर प्रवास करते समय ये पतझड़ और वसंत के मौसम में भारत से होकर गुजरते हैं। गुजरात और राजस्थान पैसेज माइग्रेशन के बहुत बड़े केंद्र हैं। यहाँ अगस्त से अक्टूबर के बीच हजारों की तादाद में पक्षी गुजरते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बारिश के बाद हरे भरे और कीड़े मकोड़ों से भरे इस इलाके में उपलब्ध भोजन का लाभ उठा सकें। भारत में पैसेज माइग्रेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है गुजरात का कच्छ का इलाका। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीकी महाद्वीप के करीब है और यहाँ अलग अलग तरह के प्राकृतिक आवास मौजूद हैं। कच्छ से 8 से भी ज्यादा प्रजातियों के पैसेज माइग्रेंट्स गुजरते हैं, जिनमें यूरोपियन रोलर, रेड बैग्ड और रेड टेल्ड श्राइक, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, रूफ टेल्ड स्क्रब रॉबिन, ग्रेटर व्हाइट थ्रोन, कॉमन कुकू और ब्लू चीक्ड बी ईटर शामिल हैं। इनमें से रोलर कुकू और बी ईटर की कुछ आबादी भारत के भीतर ही प्रजनन भी करती है। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्र में बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही निकल पड़ते हैं। वहां से लंबी यात्रा करके ये बर्ड्स भारत आते हैं और कुछ महीनों तक यहाँ रहते हैं। गर्मी के मौसम के पहले ये यहाँ से वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लैमिंगो, रफ तिदार, गुलाबी पेलिकिन और गैडवाल प्रमुख हैं। पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों के बीच मौसम और जलवायु में बहुत ही ज्यादा फर्क देखा जा सकता है, लेकिन इस फर्क की वजह से उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले बहुत सारे पक्षी सर्दी का मौसम आते ही सर्दी से बचने के लिए अपने इलाके छोड़ देते हैं और वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना पड़ता है, इसलिए जीवन आसान रहता है।

है। भारत के मैदानी इलाकों में झीलों के आसपास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं। वैसे आपको बताएं कि मुंबई जहां से हम बोल रहे हैं, यहां पर भी फ्लेमिंगो आया करते हैं और बड़ी तादाद में आया करते हैं। मुंबई में शिवड़ी नाम का इलाका है जहां बड़ी तादाद में फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा कोंकण के समुद्र तटों पर भी बहुत सारे पक्षी आया करते हैं। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं साइबेरियन क्रेन या सारस। सारस परिवार की एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो साल का ज्यादातर समय वेस्टर्न साइबेरिया में गुजारती है। ये पक्षी सर्दी के मौसम में साइबेरिया की कड़ाकेदार ठंड से बचने के लिए 4000 मील, यानी अगर इसमें 1.5 का आप गुणा कर दें तो आपको पता चलेगा के कितने किलोमीटर होते हैं, इतने किलोमीटर दूर आते हैं। और भारत में ये मुख्य रूप से भरतपुर नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। भारत में ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी तादाद में झुंड के रूप में आते हैं। मुख्य रूप से ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आते हैं, जो इनका सबसे बड़ा प्रवास होता है। ये केवल अक्टूबर के महीने में आते हैं। रफ पक्षी आर्कटिक के टुंड्रा इलाके के पक्षी हैं। ये भी बर्फीली सर्दियों में भारत का रुख करते हैं, जहां इस मौसम में इन्हें भरपूर खाना मिलता है। लेकिन गर्मियों में इनकी ब्रीडिंग का मौसम शुरू होने पर ये अपने इलाके में वापस लौट जाते हैं। तिदारी यानी उत्तरी शोवेलर को खोखार, गिराह या पुनन भी कहते हैं। ये सतही बतख है जो यूरोप और उत्तरी एशिया में रहती है, लेकिन सर्दियों में दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में ये चली आती है। और हैरत की बात यह है कि अपनी इस यात्रा में ये हिमालय पर भी थोड़े समय के लिए ठहरती है। पेलिकन अपनी विशाल चोंच के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इनमें गुलाबी पेलिकन या रोजी पेलिकन के पंखों का फैलाव लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तकरीबन 12 फुट का फैलाव होता है इनके पंखों का। ये उत्तर भारत में ऐसे तालाबों और झीलों में आना पसंद करते हैं जहां मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। गैडवाल छोटे भूरे रंग की बतख होती है जो सर्दियों में भारत में बड़ी तादाद में आती है, यूरोप से आती है और साफ पानी वाले तालाबों और झीलों में रहना पसंद करती है। तो भाई, हमने आपको बताया कि 9 मई को माइग्रेंट बर्ड्स डे मनाया जाएगा। और भारत में कौन कौन से प्रवासी पक्षी किन इलाकों में किस मौसम में आते हैं, क्या कभी आपने इन पक्षियों को देखने की और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है?

10 मई का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया भर में माओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को फोकस में रखने वाला ये दिन है मदर्स डे। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बरस 10 मई को ये दिन मनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, 20वीं सदी की बात है। फिलाडेल्फिया में एना जार्विस रहती थी, जिन्होंने अपनी माँ को याद किया और इस तरह से मदर्स डे की नींव पड़ी। एना जार्विस की माँ सारी जिंदगी महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा के लिए कोशिशें करती रही थी। 1905 में उनकी मौत हुई और बाद में एना ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। 12 मई 1907 को एना जार्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्रेफ्टन में चर्च में अपनी माँ की याद में एक सभा आयोजित की। 5 साल के भीतर अमेरिका के लगभग हर राज्य में ये दिन मनाया जाने लगा। फिर 1914 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने इसे नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और अब 10 मई को मदर्स डे है, यानी कल के दिन आपको अपनी माँ को करना है सलाम, उनको कहना है थैंक यू और उन पर प्यार बरसाना है।

आयोजित एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सम्मेलन में आया था और इसकी वजह यह थी कि हेनरी ड्यूनेंट की स्मृति को सलाम किया जाए और मानवता की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हेनरी ड्यूनेंट ने 1859 में सोलफेरेनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की मदद की थी। ड्यूनेंट ने इस बारे में किताब लिखी जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सोलफेरेनो और युद्ध के समय घायलों की सहायता के लिए उन्होंने एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया था। मानवता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लगातार कोशिशें की थी। इत्तेफाक की बात है कि 2026 की विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम भी यही रही, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। आप दिन में आजकल एक वाक्य बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। इस बरस सचमुच बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने तो ये अनुमान भी दिया है कि मई के महीने में हीट वेव बहुत दिनों तक कायम रह सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2026 में सुपर एल नीनो डेवलप हो सकता है। ये मौसम का एक ऐसा पैटर्न है जिसने 1877-78 में भयानक तबाही मचाई थी। अब जिस तरह से पूरी दुनिया में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रही है, उसके हिसाब से दोबारा सुपर एल नीनो के आने का खतरा बढ़ गया है। वैसे एल नीनो के बारे में आपको बता दें कि यह जलवायु से जुड़ी एक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में मौसम का पैटर्न बदल जाता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, मानसून कमजोर हो जाता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है जो एल नीनो के बनने का संकेत भी है और इस वजह से गर्मी ज्यादा पड़ सकती है। गर्मी का मौसम आम लेकर आता है, आइसक्रीम और कुल्फी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, छतों पर सोना, इन तमाम खुशगवार चीजों के बीच आजकल जो चीज सभी को परेशान कर रही है वो है हीट वेव। हीट वेव के वजह से गर्मियों का जो मजा है वो एक तरह से खराब ही हो रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को खबरदार रहने के लिए चेतावनी भी जारी की है। वही जिज्ञासा कार्यक्रम में तो हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं ना। आप सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये हीट वेव आखिर है क्या। गर्मियों में गर्म हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लेकिन हीट वेव तब होती है जब किसी जगह का मैक्सिमम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब हीट वेव आपके लिए क्यों खतरनाक है ये हम आपको बता रहे हैं। हीट वेव या लू के चलते चक्कर आ सकता है, सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इससे पानी की जोरदार कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर में बहुत भारी गिरावट भी आ सकती है। लंबे समय तक अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा रहे तो दिल, फेफड़े, गुर्दे, लीवर और दिमाग जैसे अंगों पर भी खतरा बना रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा एबनॉर्मल गर्मी में निकलते हैं तो मस्तिष्क में सूजन भी आ सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अब इसके लक्षण हम आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति हीट वेव के संपर्क में आता है तो उसका इंटरनल सिस्टम ऊंचे तापमान के अनुकूल नहीं बन पाता। लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के बाद सबसे पहले तो पसीना आने की जो काबिलियत है उस पर असर पड़ता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने की एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब किसी व्यक्ति को पसीना आना बंद हो जाता है तो उसे गर्मी से थकावट होने का खतरा ज्यादा होता है और हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घर के अंदर रहने चाहिए, ठंडा लेकिन जरूरत से थोड़ा ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि लू से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को कड़ी दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी खूब पानी पीना है, बहुत सारे तरल पदार्थ अपने खाने पीने में शामिल करना है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, 30 मिनट का अलार्म सेट कीजिए। हर 30 मिनट में आपको थोड़ा ना थोड़ा पानी जरूरी तौर पर पीना है। कैफीन या अल्कोहल या चीनी वाले लिक्विड से बचें, बर्फीली चीजों से बचें क्योंकि ये पेट में ऐठन पैदा कर सकती हैं। जहां तक संभव हो घर के अंदर रहें, सुबह और शाम के वक्त ही आपको बाहर निकलना है। सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, छाता लेकर चल सकते हैं, साथ में पानी लेकर चल सकते हैं। हीट वेव से बचिए, गर्मी का सामना कीजिए। अब देखिए मौसम

8 मई को पूरी दुनिया में रेड क्रॉस डे मनाया गया और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये दिन कैसे शुरू हुआ। असल में ये आयोजन रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट की जयंती के दिन मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के दिन। विश्व रेड क्रॉस डे मनाने का विचार सबसे पहले 1933 में टोक्यो जापान में

मौसम का जो असंतुलन है उसका जो असर है वो तो पूरी दुनिया में दिखाई दे ही रहा है। जिज्ञासा कार्यक्रम में अब हम तलत महमूद को नमन कर रहे हैं। मखमली आवाज के धनी जाने माने गायक तलत महमूद ने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाने का सफर शुरू किया था। 16 बरस की उम्र में उनका पहला गाना आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया और उनके रिकॉर्ड निकाले गए। फिर 1944 में तलत महमूद गायक और अभिनेता बनने की चाहत लिए कोलकाता चले गए। तपन कुमार के नाम से कई बंगाली और हिंदी गाने गाए और उसके बाद वो मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन वो एक बड़े पार्श्व गायक के रूप में बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। तलत महमूद के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 9 मई को उनकी याद का दिन होता है। हम उन्हें विनम्र नमन कर रहे हैं।

ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी, और हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

0: पिछले हफ्ते आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपनी अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है, स्त्री को दासी या फिर विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं होता। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ गई। पूरी कहानी मृणाल की जबानी है, सुनिए आगे।
1: जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है? हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ

के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके, वे पतिव्रता थी। पतिव्रता, उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थीं, मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग

एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने

सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुस्संवेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा ना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 125 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

0: हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

0: ये है भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। अब हमारे केंद्र से सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं भारतीय सेना गीत।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: बरसों बाद ऊँट में निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया दो गाना। गीत रचना गुलजार की है, आर डी बर्मन का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

मेरे जीवन साथी फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को। आर डी बर्मन का संगीत, मजरू की गीत रचना

कभी कभी फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश को। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आपकी कसम फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया दो गाना। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का।

0: आपकी कसम, फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म रंगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्ष सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुई

0: विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट, आज समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के 14 का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई

0: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र FM 103.2 MHz पर। अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत, गजल और भजनों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल की गाई ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की गाई ये गजल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कविता सेठ की गाई ये गैर फिल्मी गीत रचना।

अभी आपने सुना कविता सेठ का गाया ये गैर फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से आपको सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजल भजनों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं सिल्क रूट की ये गैर फिल्मी रचना।

सिल्क रूट की गाई इस गैर फिल्मी गीत रचना के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है, हमारी आज की सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, शुभ रात्रि, जय हिंद।